अनंत तो हो जाना है कि आगे बेअंत है। अंत होने से पहले बेअंत को जान लो तो फिर अगले वाले अंत में भी कोई पीड़ा नहीं रहेगी। बेअंत इस मालिक खालिक को कहते हैं जिसका जन्म नहीं है, जिसका मरण नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाए एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गीतकार साहिर लुधियानवी पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपुरी ने। निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त किरणी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। आज का सफर उर्दू के उस अजीम शायर के नाम जिसने अपनी कलम से हर तलखी को नज़्म बना दिया, जिसने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जी हाँ, आज हम साहिर लुधियानवी के पहलू टटोलेंगे और उनके बेहतरीन गीतों के साथ इस सफर को यादगार बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं। साहिर का असली नाम था अब्दुल हई। 8 मार्च 1921 को लुधियाना पंजाब में उनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ, लेकिन उनकी किस्मत में बचपन से ही कड़वाहट लिखी थी। जमींदार पिता और मां सरदार बेगम के बीच के तनाव ने उनके शुरुआती सालों को खौफ और आर्थिक तंगी में गुजारा। पिता ने मां पर मुकदमे किए, साहिर की जान को खतरा हुआ और इस भयानक माहौल ने साहिर के भीतर एक विद्रोही शायर को जन्म दिया। उन्होंने लुधियाना के सरकारी कॉलेज में पढ़ाई की, जहां उनकी नज़्में बेहद मशहूर हुई, लेकिन एक सहपाठी लड़की से प्रेम संबंध के चलते उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये निष्कासन उन्हें और उनकी मां को पहले लाहौर और फिर 1949 में बॉम्बे ले आया। उनका पहला कविता संग्रह तलखियां 1945 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें निजी दर्द और समाज के प्रति तीखी आलोचना थी। बॉम्बे आकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया। वो सिर्फ लोकप्रिय गाने लिखने को तैयार नहीं थे, वो चाहते थे कि उनके गानों में शायरी का एक गहरा एहसास हो। फिर उनकी मुलाकात हुई SD बर्मन से, जिन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचाना। बर्मन साहब ने एक धुन दी और साहिर ने उस धुन पर लिखा वो अमर गीत, जिसने उन्हें एक फिल्म गीतकार के तौर पर स्थापित कर दिया। पेश है साहिर की कलम से निकला फिल्मी दुनिया में पहचान दिलाने वाला पहला कदम।

0: ठंडी हवाएं एक ऐसी सादगी जो दिल को छू जाती है। इस गीत की सफलता के बाद साहिर और एसडी वर्मन की जोड़ी ने बाजी, जाल और टैक्सी ड्राइवर जैसे कई हिट फिल्में दी, लेकिन साहिर का असली इनकलाबी पहलू अभी सामने आना बाकी था, जिस पर हम अब रोशनी डालेंगे। साहिर लुधियानवी को हिंदी सिनेमा का इनकलाबी शायर कहा जाता है। वो पहले गीतकार थे जिन्होंने अपने गीतों के लिए पारिश्रमिक तय करने पर जोर दिया और फिल्म के पोस्टर पर गीतकार को संगीतकार के बराबर जगह दिलवाई। वो सिर्फ प्रेम गीत नहीं लिखना चाहते थे, उनका मानना था कि एक कलाकार को समाज की बुराइयों को उजागर करना चाहिए। 1957 में फिल्म प्यासा आई, जिसमें साहिर ने गुरुदत्त के लिए अपनी सारी कड़वाहट, अपना सारा विद्रोह उड़ेल दिया। उन्होंने गरीबी, बेबसी और इंसानियत के गिरते मूल्यों पर वो सवाल उठाए जो आज भी गूंजते हैं। उनका ये गीत एक शायर की पीड़ा थी, जब उसने देखा कि उसकी कला और कविता को महज मनोरंजन का जरिया बना दिया गया है। पेश है फिल्म प्यासा से वो नज़्म जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कदावर नेताओं को भी भावुक कर दिया था।
1: जाने वो कैसे

जाने वो कैसे लोग थे, आज भी हर संवेदनशील दिल इस गीत से जुड़ाव महसूस करता है। इस गहन सामाजिक दृष्टिकोण के बावजूद साहिर की रोमानियत भी बेमिसाल थी। उन्होंने प्यार को सिर्फ फूल और चांद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जिंदगी के उतार चढ़ाव में एक सच्चा साथी माना। फिल्म हम दोनों में संगीतकार जयदेव के साथ साहिर ने एक ऐसा फलसफा पेश किया जो आज भी मुश्किलों में जीने का हौसला देता है। ये गीत हमें सिखाता है कि जिंदगी के साथ चलने में भी असली खुशी है। फिल्म हम दोनों से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनिए जिंदगी के सफर का ये अमर गीत।

1960 का दशक साहिर के करियर की ऊंचाई थी। उन्होंने खयाम, रवि, रोशन और एन दत्ता जैसे कई महान संगीतकारों के साथ काम किया। साहिर की लेखन शैली की खासियत थी उनकी भाषा में मौजूद सादगी, जो सीधे दिल में उतर जाती थी। साहिर को उनकी रचनाओं के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया। 1964 में फिल्म ताजमहल के लिए और फिर 1977 में फिल्म कभी कभी के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ताजमहल में उन्होंने एक ऐसे प्यार को लफ्ज दिए जो महलों से बड़ा और वादा निभाने की कसौटी पर खरा उतरता है। एक ऐसा वादा जो हर युग के प्रेमियों के लिए एक मिसाल बन गया।

साहिर का एक और पहलू है जो फिल्म वक्त में नजर आता है। उन्होंने इस फिल्म में एक गहरी बात कही कि इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वक्त सबसे बड़ा है। उन्होंने कल की चिंता और गुजरे हुए कल के अफसोस से मुक्त होकर आज में जीने की सीख दी, क्योंकि जो कुछ भी है वो बस यही एक पल है। फिल्म वक्त से ये गीत जो हमें समय की सच्चाई से रूबरू कराता है और साथ ही जिंदगी जीने का हुनर भी सिखाता है।

साहिर की रूमानी नज्मों में हमेशा एक सूक्ष्म विद्रोह मौजूद रहा। फिल्म हमराज में उन्होंने नीले गगन के नीचे बैठकर अपने महबूब से दूर रहने की कल्पना की, लेकिन उस दूरी में भी प्यार की शिद्दत को कम नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तिगत दर्द और भावनाओं को प्रकृति के विशाल कनवास पर उकेरा।

0: अब आते हैं साहिर की जिंदगी के सबसे चर्चित और अमर पहलू पर, अमृता प्रीतम के साथ उनकी अधूरी मोहब्बत। ये वो प्रेम कहानी थी जो हकीकत में मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन अदब में अमर हो गई। साहिर की इस अधूरी चाहत ने उन्हें कभी कभी जैसे कालजयी रचना करने के लिए प्रेरित किया। ये गीत सिर्फ एक प्रेम घोषणा नहीं है, बल्कि एक सपना है, एक ख्याल है कि अगर जिंदगी उस मोहब्बत की छाओं में गुजरती तो कितनी खूबसूरत होती। 1976 की फिल्म कभी कभी से मुकेश साहब की भावुक आवाज में साहिर लुधियानवी की कलम का सबसे बेहतरीन रूमानी इजहार।
1: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

साहिर लुधियानवी, जिन्होंने कहा था, मैं किसी गैर के आंखों का नूर क्यों बनूं, मैं किसी और के ख्वाबों में क्यों रहूं। अपने सिद्धांतों पर टट्टे रहने वाले ये महान शायर 25 अक्टूबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से हमें अकेला छोड़ गया, लेकिन जाते जाते उन्होंने हमें एक और जरूरी बात सिखाई, अगर कोई रिश्ता निभाना मुमकिन ना हो तो उसे बेवजह खींचने के बजाय एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना चाहिए। उनकी इस फिलॉसफी को दर्शाता फिल्म गुमराह से उनका ये विदाई गीत।

ये था आज का सफर मशहूर गीतकार साहिर लुधियानवी पर। आज के इस कार्यक्रम का सफर यही समाप्त होता है। मिलूंगी किसी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 13। आज का एपिसोड आधारित था गीतकार साहिर लुधियानवी पर। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरने ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।
1: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

खफा हो के चेहरा छुपा ले, मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ। हाँ।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अंबाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

नमस्कार, FM 90.0 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो, और मैं हूं आपका रेडियो हम सफर नरेश शर्मा। लघु कथाओं की श्रृंखला में अक्सर आपको मैं लघु कथाएं ही सुनाता हूं, लेकिन आज चेतावनी दे रहा हूं। और ये जो चेतावनी है ना, इसकी रचना की है आयान पटेल ने।

दो बातों पर जरा नजर डालिए कि 12,000 करोड़ रुपए की मलकियत वाले रेमंड ग्रुप के मालिक विजयपत सिंह हानिया पैदल हो गए, बेटे ने पैसे पैसे के लिए मोहताज कर दिया, और दूसरी खबर करोड़ों रुपए के फ्लैट्स की मालकिन आशा साहनी का मुंबई में उनके फ्लैट में कंकाल मिला। विजयपत सिंघानिया और आशा साहनी दोनों ही अपने बेटों को अपनी दुनिया समझते थे, पढ़ा लिखा कर योग्य बनाकर उन्हें अपने से भी ज्यादा कामयाबी की वृद्धि पर देखना चाहते थे। ये तो हर एक माँ बाप की इच्छा होती है कि अपनी संतान हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। विजयपत सिंघानिया का भी यही सपना रहा होगा, उन्होंने देखा भी था कि उनका बेटा उनकी विरासत संभाले, उनके कारोबार को और भी ऊंचाइयों पर ले जाए। आशा साहनी और विजयपत सिंघानिया दोनों की इच्छा पूरी हो गई। आशा का बेटा विदेश में आलीशान जिंदगी जीने लगा और सिंघानिया के बेटे गौतम ने उनका कारोबार संभाल लिया। तो फिर चूक कहां गए दोनों? क्यों आशा साहनी कंकाल बन गई? क्यों विजयपत सिंघानिया 78 साल की उम्र में सड़क पर आ गए? मुकेश अंबानी के राजमहल से भी ऊंचा जेके हाउस बनवाया था, लेकिन अब किराए के फ्लैट में रहने पर मजबूर है। तो क्या दोषी सिर्फ उनके बच्चे हैं? अब जरा जिंदगी के क्रम पर नजर डालें। बचपन में ढेर सारे नाते रिश्तेदार, ढेर सारे दोस्त, ढेर सारे खेल और ढेर सारे खिलौने। थोड़े बड़े हुए तो पाबंदियां शुरू। जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ी, कामयाबी का फितूर, आंखों में ढेर सारे सपने। कामयाबी मिली, सपने पूरे हुए, आलीशान जिंदगी मिली, फिर अपना घर, अपना निजी परिवार, हम दो, हमारा एक, किसी और की एंट्री बैन, दोस्त नाते रिश्तेदार सब छूट गए। अरे यही तो है शहरी जिंदगी। दो पड़ोसी बरसों से साथ रहते हैं लेकिन नाम तक नहीं जानते एक दूसरे का। क्यों जाने क्या मतलब है, हम क्यों पूछें? फिर एक तरह के डायलॉग्स, हम लोग तो बच्चों के लिए ही जी रहे हैं। मेरी नजर में ये दुनिया का सबसे खतरनाक डायलॉग है कि हम तो अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। बस सब सही रास्ते पर लग जाएं। अगर ये सही है तो फिर बच्चों के कामयाब होने के बाद आपके जीने की जरूरत ही क्या है? यही तो आप चाहते थे ना, ये बच्चे कामयाब हो जाएं। कहीं ये हिडन एजेंडा तो नहीं था कि बच्चे कामयाब होंगे तो उनके साथ बुढ़ापे में हम लोग मौज मारेंगे? अगर नहीं तो फिर आशा साहनी और विजयपत सिंघानिया को शिकायत कैसी? दोनों के बच्चे कामयाब हैं, दोनों अपने बच्चों के लिए जिए, तो फिर अब उनका काम खत्म हो गया, जीने की जरूरत ही क्या है? आपको मेरी बात बुरी लग सकती है लेकिन जिंदगी अनमोल है प्यारे। सबसे पहले अपने लिए जीना सीखिए। जंगल में हिरन से लेकर भेड़िए तक झुंड बना लेते हैं, लेकिन इंसान क्यों अकेला रहना चाहता है? गरीबी से ज्यादा अकेलापन तो अमीरी देती है। क्यों जवानी के दोस्त बढ़ती उम्र के साथ छूटते जाते हैं, नाते रिश्तेदार सिमटते जाते हैं? करोड़ों के फ्लैट की मालकिन आशा साहनी के साथ उसकी ननद हो जाई जेठ जेठानी के बच्चे पढ़ सकते थे, क्यों खुद को अपने बेटे तक सीमित कर लिया? सही उम्र में क्यों नहीं सोचा कि बेटा अगर नालायक निकल गया तो कैसे जिएंगे? जब दम रहेगा दौलत रहेगी तब सामाजिक सरोकार टूटे रहेंगे, ऐसे में उम्र थकने पर अकेलापन तो हासिल ही होगा। इस दुनिया का सबसे बड़ा भय है अकेलापन। व्हाट्सएप, फेसबुक इत्यादि के सहारे जिंदगी नहीं कटने वाली। जीना है तो घर से निकलना होगा, रिश्ते बनाने होंगे, दोस्ती गांठनी होगी, पड़ोसियों से बातचीत करनी होगी। आज के फ्लैट कल्चर वाले महानगरीय जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि खुदा ना खास्ता मौत हो जाती है ना तो कोई कंधा देने वाले चार लोगों का इंतजाम भी नहीं होता। जिन पड़ोसियों के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है ना, जिन्हें कभी आपने अपने घर पर नहीं बुलाया, बोला आपको घाट तक पहुंचाने क्यों जाएंगे? याद कीजिए दो फिल्मों को, एक अवतार और दूसरी बागमा।
बेटों से बेदखल होकर अगर जिंदगी दोबारा इंसान को खड़ा करती है ना, तो उसके पीछे वजह होती है। और इन दो फिल्मों में भी दो वजह थी। एक तो राजेश खन्ना यानी अवतार के दोस्त थे, दूसरे एक वफादार नौकर था जिसे अवतार ने अपने बेटों की तरह पाला था। वक्त पड़ने पर आखिर यही लोग काम आए ना। और बागमा के राज मल्होत्रा यानी अमिताभ बच्चन बेटों से बेइज्जत हुए, लेकिन दूसरी पारी में बेटों से बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, क्योंकि उन्होंने एक अनाथ बच्चे सलमान खान को अपने बेटे की तरह पाला था। उन्हें मोटा भाई कहने वाले परेश रावल थे, नए दौर में नई पीढ़ी से जुड़े रहने की कुव्वत थी। विजयपत सिंघानिया के बाद सब कुछ वैसे भी गौतम सिंघानिया का ही होने वाला था, तो फिर क्यों जीता जी सब कुछ बेटे को सौंप दिया? क्यों संतान की मोहब्बत में भूल गए कि इंसान की फितरत किसी वक्त भी बदल सकती है? जो गलती विजयपत सिंघानिया ने की, आशा साहनी ने की, वो आप मत कीजिएगा। रिश्तों और दोस्ती की बागवानी को सींचते रहिए। ये जिंदगी आपकी है, बच्चों की बजाय पहले खुद के लिए जिंदा रहिए। अरे आप जिंदा रहेंगे तो बच्चे जिंदा रहेंगे ना। अपेक्षा किसी से मत कीजिए, क्योंकि अपेक्षा ही अक्सर दुख देती है।

चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, इतनी निर्भरता ठीक नहीं, क्योंकि मौसम और नियत इन दोनों को बदलते देर नहीं लगती।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम सुनील है, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरे पास 12 एकड़ जमीन है। अब की बार मैं टोटल नुकसान मानता हूँ मौसम परिवर्तन का, यानी कीटों के कारण लगभग 50% नुकसान हुआ है। ये फसल बीमा स्कीम बहुत ही बढ़िया स्कीम है। पिछली बार किसानों की 100% कोटम खत्म हो गई थी, तो कंपनियों ने बीमा दिया है, किसानों को कुछ ना कुछ भरपाई हो गई। जी मैं तो चाहता हूँ हर किसान को बीमा करवाना चाहिए।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: तोछु बोजन FM 90.0 रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजन रोजियो पनिन पसंदीदा बात।

0: ये है रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। आइए सुनते हैं एक विशेष कार्यक्रम गजल गायक जगजीत सिंह के ऊपर, और पेश करने जा रहे हैं रमेश मरहटा।
1: हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। मखमली आवाज के मालिक जगजीत सिंह नहीं रहे।
2: चिट्ठी न कोई संदेश,
1: ऐसे हिजर के मौसम कब कब आते हैं, तेरे अलावा याद हमें सब आते हैं। जगजीत का जन्म 8 फरवरी 1941 को राजस्थान के गंगानगर में हुआ था। उनके वालिद मोहतरम सरदार अमर सिंह धमानी भारत सरकार के एक विभाग पीडब्ल्यूडी में सरकारी कर्मचारी थे। जगजीत का परिवार पंजाब के रोपड़ जिले के दल्ला गांव का रहने वाला है। मां थी बचन कौर। जगजीत के बचपन का नाम जीत था। बाद में ज्योतिषों के कहने पर उनका नाम जगजीत पड़ गया। शुरुआती तालीम गंगानगर के खालसा स्कूल में हुई और बाद में पढ़ने के लिए आप जालंधर आ गए। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आपने इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। सन 1965 में आप मुंबई आ गए और पेइंग गेस्ट के तौर पर मुंबई शहर में ही रहने लगे, और यहाँ विविध भारती में जिंगल और विज्ञापन गाकर रोजी रोटी कमाने का जरिया पैदा किया। सन 1976 में पहला हिट एल्बम पेश किया और इन 1967 में एक रिहर्सल के दौरान आपकी मुलाकात चित्रा से हुई, और 2 साल के बाद यानी 1969 में आप दोनों ने शादी करने का फैसला किया। दोनों साथ मिलकर

0: छोटी सी रात वो लंबी
1: गजल गायकी चिनाब के पानी से उठती हवा की हल्की महक का एहसास कराती है। बेशक जहलम के उस पर गजल गायकी की एक बेशकीमती दुनिया बसती रही है, पर वहां भी इस बात का इल्म रहा है कि दूसरी छोर पर गजल को बहुत करीने से, संजीदा जज्बात से सजाया

गजल ही नहीं, दोहे, कुछ लोकगीत और भजनों में भी जगजीत ने अनोखा समर्पण दिखाया। बेगम अख्तर ने गाया और बखूबी गाया। मेहदी हसन को तो लोगों ने ऊंचे तख्त पर ही बिठा दिया। गुलाम अली हर महफिल की शान हो गए, पर जगजीत को यह दर्जा मिला कि उनकी वजह से गजल लोगों में आम हो गई।

पंजाब की धरती में शायद नदियां भी सुर से बहती हैं। जगजीत ने वहां की खुशबू को पहचाना, शौक मिजाज को समझा, वहां के रंगों को जाना और जगजीत बचपन से ही गाने लगे। आपकी गजल हर दिल को छूती है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। शास्त्रीय संगीत की तालीम उन्होंने उस्ताद जमाल खान से ली। जगजीत के पिता एक साज बजाया करते थे और उस साज को दिलरुबा कहते हैं। घर में भले ही संगीत का माहौल नहीं था, पर उनके पिता को संगीत का शौक था। जगजीत के पिता ने ही जगजीत को संगीत की तालीम दिलानी शुरू की। बाद में उनका रुझान इस तरफ हो गया और आप सीखने लगे। जगजीत ने राजस्थान के श्री गंगानगर के पंडित छगनलाल शर्मा को अपना गुरु बनाया और लगभग 2 साल तक संगीत की तालीम हासिल की।

1990 में एक सड़क हादसे में विवेक उनका बेटा जो 21 साल का था दुनिया से चल बसा। उनकी गोद ली बेटी मोनिका ने खुदकुशी कर दुनिया, जगजीत और चित्रा को अलविदा कहा। जगजीत अक्सर कहा करते थे, संगीत के लिए समर्पण और रियाज की जरूरत होती है। जब तक मैं जिंदा हूं, गजल भी जीवित है। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

0: अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह पर एक कार्यक्रम, प्रस्तुतकर्ता रमेश मरहटा। यह है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भरत सोपोरी। आइए आज बात करते हैं प्यार की। इस संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी प्यार जरूर होता है, ये बहुत ही स्वाभाविक है। जैसे आपको सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वैसे ही पहले प्यार में भी आप ऐसे ही पड़ जाते हैं, बस सोचे समझे बगैर। और उस पहले पहले प्यार के कहने ही क्या, जब आपके लिए हर बात हर चीज का मतलब बदल जाता है, सब कुछ बहुत रुबेला सा नजर आता है। आप हमेशा इन्हीं ख्यालों में रहना चाहते हैं। पहला प्यार बहुत ही नादान, सच्चा और खास होता है, जो बिना कुछ सोचे समझे बस हो जाता है। ये लड़के और लड़की दोनों के दिलों को ऐसा अनुभव से भर देता है जो बयां नहीं किया जा सकता। पहले प्यार का एहसास आप कभी भी नहीं भूल सकते, चाहे उसके बाद आपको फिर किसी और से प्यार हो भी जाए। पर पहले प्यार से जुड़ी कुछ खास बातें, कुछ खास यादें होती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं, जिन्हें आप भूलना भी चाहे तो कभी भुला नहीं सकते।

कोई कहता है प्यार नशा बन जाता है, कोई कहता है प्यार सजा बन जाता है, पर प्यार करो अगर सच्चे दिल से तो प्यार जीने की वजह बन जाता है। धड़कते हुए दिल का करार हो तुम, इन सजी महफिलों की बहार हो तुम, तरसती हुई निगाहों का इंतजार हो तुम, मेरी जिंदगी का पहला प्यार हो तुम।

कभी कभी ये समझने में बड़ी कठिनाई होती है कि ये प्यार ही है या कुछ और। पहला पहला प्यार हो तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है ऐसा। किसी का अच्छा लगना और फिर एक ही मुलाकात में पूरी जिंदगी बन जाना, ये कैसा एहसास है जिसने पूरे जीवन को बदल डाला है। जिंदगी बदल गई है, वो सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। कहीं ये प्यार तो नहीं है, बड़ी उलझन है। लेकिन जाने तो कैसे जाने कि आपको प्यार हो गया है। अगर ऐसा ही कुछ एहसास आपके मन में जाग रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्यार प्यार और सिर्फ प्यार हो गया है। हर पल मन में कुछ बेचैनी सी महसूस होती है, सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ कमी सी लगती है। उसका जिक्र छेड़ते ही प्यार की खुशबू आती है, उसका नाम सुनते ही चेहरे पर शर्म की लाली छा जाती है, दिल धड़कने लगता है। पूरी रात इधर उधर करवट बदल बदल कर ही बीत जाती है, नींद आती ही नहीं है, आए भी तो कैसे। आंखें बंद करते ही वो सामने आ जाते हैं और फिर पूरी रात आंखों आंखों में ही कट जाती है। वो साथ है तो जिंदगी हसीन और मौसम खुशनुमा बन जाता है, इसी तरह जिंदगी की ख्वाहिश करने लगती है। आपके चेहरे पर अचानक ही गजब का निखार आ जाता है, दोस्त कहने लगते हैं कुछ तो चक्कर है, लगता है ये प्यार की चमक है, और आप शर्मा कर मुंह छुपा लेते हैं। जी हां, ये पहला प्यार है।

पहले प्यार का होना जितना आसान नहीं होता, ठीक उसी तरह उससे भूलना भी आसान नहीं होता है। वैसे तो प्यार हमेशा खास होता है, लेकिन पहले प्यार के दौरान हुई छोटी सी छोटी घटना भी आपको याद रह जाती है और उससे आप भूल नहीं पाते हैं। दरअसल पहला प्यार आपको उन घटनाओं से परिचय करवाता है जिससे आपने पहले कभी किया ही नहीं है। पहले प्यार के दौरान हुई चीजें अच्छी हो या बुरी, आश्चर्यजनक हो या स्वाभाविक, लेकिन आपको उस दौरान की हर बात याद रहती है। ये सारी चीजें आपके जीवन का एक हिस्सा होता है। जब भी आप अपने पहले प्यार के बारे में सोचते हैं तो वो सारी चीजें आपको थोड़ा अजीब पर बहुत अच्छी लगती हैं। भले ही आपका पहला प्यार 50 साल पहले ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको उस दौरान की एक एक बात याद रह जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि इंसान की याददाश्त तेज है, इसलिए उससे हर बात याद रह जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं।

अनोखा होता है पहला प्यार। आपने पहले प्यार को अपने जिस व्यक्ति के साथ अनुभव किया था, हो सकता है उन्होंने आपको नई चुनौतियों को लेने और नई चीजों को आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया हो, जिससे वो आपके यादों में बस गए हो। कुछ मामलों में पहला प्यार भी आपके विभिन्न भौतिक प्राथमिकताओं में शामिल हो सकता है, जो आपके अंदर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं को लाने का कारण हो सकता है। आप जब भी पहली बार प्यार में पड़ते हैं तो आप उस प्यार के सामने अपने आप को कमजोर समझते हैं। अचानक आप किसी और के बारे में इस तरह से परवाह करने लगते हैं कि आप खुद को ही भूल जाते हैं। जब आप प्यार के रोमांटिक अंदाज को अनुभव करते हैं तो आपके अंदर संभावना और उत्साह की नई दुनिया खुल जाती है। प्यार के दौरान महसूस की गई चीजें आपके द्वारा पहले महसूस की गई किसी भी चीज के विपरीत होती है, इसलिए इसका अनोखापन आपको हमेशा के लिए याद रह जाता है।

जवानी की याद दिलाता है पहला प्यार। आप जब भी पहले प्यार में होते हैं तो उस समय दुनिया की हर चीज आपको अच्छे लगने लगती है, क्योंकि ये समय आपके जीवन का वो समय होता है जब आप पहली बार जवानी की दहलीज पर आकर खड़े होते हैं। पहला प्यार आपके युवा अवस्था की यादों को फिर से वापस ले आता है। अपनी जवानी का प्रतिनिधित्व करने के साथ पहला प्यार आपको उस समय की याद दिलाता है जब आपको संभावनाएं अंततः लगती थी। उस समय आपको जीवन से जुड़ा हर कुछ आपको नया और रोमांचक लगता है। पहला प्यार को याद करते हुए आप इतिहास की अच्छी यादों में चले जाते हैं और अपने आज को ढूंढने लगते हैं।

एक बार ही होता है पहला प्यार। जीवन में किसी घटना का होना केवल एक ही बार होता है, जिस वजह से उस घटना की याद विशेष रूप से स्थान बना लेती है। ठीक उसी तरह आपका पहला प्यार भी है। आपका पहला प्यार हमेशा आपके साथ रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये आपका पहला प्यार है। पहला प्यार हमेशा आपके जीवन के बाकी हिस्सों के लिए पहला ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में आपको किससे और कितना गहरा प्यार हो रहा है। हम जब भी अपने आज को देखते हैं तो हमें अपने सुनहरे कल की याद जरूर आती है। आप जीवन में हुई उन गलतियों को भी याद करते हैं और उन गलतियों को सुधारने में मदद करने वाले लोग की भी याद आती है। इन यादों में आपका पहला प्रेम भी शामिल होता है। दरअसल पहला प्रेमी आपकी प्रेरणा होता है, जिसे आप जीवन में बहुत बार याद करते हैं। और अगर आपके जीवन में वो साथ है तो इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता।

प्यार का कोई और विकल्प ही नहीं होता। अमूमन हर चीजों का कुछ न कुछ विकल्प मौजूद होता है, लेकिन पहले प्यार का कोई विकल्प नहीं होता। युवा अवस्था के दौरान जीवन हमें जहां भी ले जाता है हम वहां चले जाते हैं। इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। अक्सर पहला प्यार भी युवा प्यार होता है। छोटी उम्र में हम परिवार की गतिविधियों में बंधे होते हैं। परिवार के द्वारा लिए गए निर्णयों के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते हैं। लेकिन प्यार में हम अपने से निर्णय लेते हैं। पहले प्यार के दौरान हमें किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि यह ईमानदारी से विकसित होता है। लेकिन पहले प्यार के बाद हम किसी भी बात के रिश्ते में स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए जब भी हम अपने अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अपने पहले प्यार की याद जरूर आती है। इसके साथ ही करता हूं समापन आज के इस कार्यक्रम का। हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक हमें जरूर दे देंगे। आप फीडबैक दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो है 9416013010। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।

0: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 5। स्टूडियो में आए हुए मेहमान हैं प्रवीण वर्मा खिप्पल, आपसे बात करेंगे आरजे सेजल।
0: नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो 90.0 मेगाहर्ट्ज़ ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। मैं तुहाडी रेडियो सखी सेजल तुहाडा स्वागत करदी हां आज दे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी विच। अज गल्लां बातां ते शायरी दा सफर होएगा पंजाबी विच ही। हुण असी स्वागत करदे हां साडे अज दे मेहमान श्री प्रवीण वर्मा जी खिप्पल दा। सर, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी। मेरे वल्लों सारयां नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, सारे ही तुहाडे स्रोतियां नूं दिलों धन्नवाद।
0: हुण मैं चाहवांगी कि साडे जिहड़े सुनन वाले ने उहनां नूं तुसी आप ही अपना छोटा जिहा परिचय दो।
2: मेरा नाम जिवें तुसी दस्सिया प्रवीण वर्मा खिप्पल। खिप्पल असल च मेरा तखलस है, ते तखलस किसी भी शायर लई, वैसे मैं अपने आप नूं शायर नहीं मानदा, पर फिर भी जिवें कहिंदे ने कि कोई कवि है शायर है उन्हें तखलस रखना जरूरी हुंदा है, ते उस दे लई मैं अपना खिप्पल रखिया सीगा। खिप्पल बेसिकली मेरा गोत है, ते खिप्पल दे मायने जिहड़े मैं मानदा हाँ खुशी ख्याल पवित्रता ते लै, इस नूं मन के मैं पूरा कंकलूजन इहदा खिप्पल च कढ़िया सीगा। ते उहदे लई मैं कुछ लाइनां लिखिया सीगा कि तखलस इस ना चीज़ दा खिप्पल है आबाद, तखलस इस ना चीज़ दा खिप्पल है आबाद, बंदा है सुबहान रहंदा खोया खाब, बंदा है सुबहान रहंदा खोया खाब।
0: वाह, बहुत खूब इंट्रोडक्शन दित्ती तुसी। ते हुण मैं ए चीज़ पूछना चाहवांगी जिवें तुहाडा जिहड़ा प्रोफेशन रहा और टीचिंग दा है, ते टीचिंग दे प्रोफेशन तो ए शेरो शायरी दा सफर किद्दां शुरू होया?
2: असल च मैं जदों अपने पिंड च रहिंदा सीगा पंजाब च, बेसिकली मेरा जन्म जिहड़ा पंजाब दा है, मोहाली डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ते 8th क्लास तो ही मैं पोइट्री गीत

0: कुछ फीलिंग्स नूं लोगों के सामने शब्द राही शेयर कर सकता हाँ। तो इस दे मद्देनज़र मैं कुछ लिखा सीगा, तो उम्मीद है तुसी पसंद करोगे कि शायरी शुरी मैं की जाना, शायरी शुरी मैं की जाना, मैं नीरा अनजाण, विच पंजाबी करा मैं गल्लां, समझा अपना माण, थोड़ा बहुता लिख लैना हाँ, जिंदगी कोलों सिख लैना हाँ, ख्वाबां दे विच खो लैना हाँ, शब्दां नू परो लैना हाँ, शब्दां विच जज्बात परो के चाड़ा इश्क दी पाण, खिपला शायरी शुरी मैं की जाना, मैं नीरा अनजाण, विच पंजाबी करा मैं गल्लां, समझा अपना माण, वारिश बुले शिव वांगरा सोध सोध के गीत लिखा, वारिश बुले शिव वांगरा सोध सोध के गीत लिखा, कुछ तेरे दिते दर्द लिखा, कुछ नाल निभाई प्रीत लिखा, कदे कादर दे सब रंग लिखा, किते कुदरत दी मैं रीत लिखा, निर्मोही निर्गुण जा खिपल लोक कहन गुणवान, शायरी शुरी मैं की जाना, मैं नीरा अनजाण, विच पंजाबी करा मैं गल्लां, समझा अपना माण, समझा अपना माण।
1: वाह बहुत खूब। ते वारिश शाह जी ते शिव बटालवी जी दा जिक्र भी हो गया है कविता विच, ते हुन मैं पूछना चाहवांगी कि इस तो अलावा केड़े केड़े जैनर्स ने जिन्हां विच तुसी कवितावां लिखना पसंद करदे हो, ते केड़ा जैनर है जिदी कविता तुसी एक होर कविता पेश करना चाहोगे?
0: एज ए टीचर जिन्हें मैनू सुनन वाले ने, मैं सब नू यही कहांगा कि तुसी जिवें साडे कोल समय सारिया कोल हुंदा है पर उसका सदुपयोग कोई कोई करता है, तो उस दे लई मैं कुछ लिखा सीगा कि वेले बैठ समा ना गवाइए किसे ना किसे काम ते लाइए, वेले बैठ समा ना गवाइए किसे ना किसे काम ते लाइए, सच दी कमाइए हक दी खाइए, वक्त अगे बंदा है चुकदा, वक्त बंदे अगे चुकदा नहीं, मैं शुक्र करां परमात्मा दा कि वक्त किसे लई रुकदा नहीं, समा है उस रेत वांगरा जो मुठ्ठी चों किर जांदा है, समा है उस रेत वांगरा जो मुठ्ठी चों किर जांदा है, जो समय नू मखौल समझदे ने समा उन्हां दा मजाक उड़ाउंदा है, वेख लैणा ए वी परख के सच दुनिया तों कदे लुकदा नहीं, मैं शुक्र करां परमात्मा दा कि वक्त किसे लई रुकदा नहीं, मैं शुक्र करां परमात्मा दा कि वक्त किसे लई रुकदा नहीं।
1: वाह बहुत खूब। ते कवितावां दा सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उस तो पहला हुन समा हो चुक्या है एक सोने जहे गीत दा, ते असी तुहानू ही पुछना चाहवांगे कि साडे लिसनर्स नू तुसी अपना केड़ा पसंदीदा गीत सुनाना चाहोगे?
0: जिवें कि मेरा प्रोफेशन टीचिंग है, ते मैं पंजाबी टीचर हाँ, ते पंजाब ते पंजाबियत नू ही मैं बहुत प्यार करदा हाँ, ते उस तरह दा एक पंजाबियत नू जिहड़ा परवान होवे ओह गीत मैं पेश करना जरूर चाहांगा। सतिंदर सरताज दा आरसी गीत जिहड़ा है ओह मैं उम्मीद करांगा तुसी चला दो, तो शुक्रिया तुहाडा।
1: जी बिल्कुल, तुहाडा पसंदीदा गीत जरूर श्रोतावां नूं सुनाया जाएगा।

सुन रहे थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 5। आज के मेहमान थे प्रवीण वर्मा खिप्पल। कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भारत सुपोरी। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की पेशकश।

आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
3: तुशु बोजान FM 90.0 रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी हुन। बोजान रोजू पनीन पसंदीद बर्थ।

0: अच्छे हम अकेले
1: चल साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।

0: ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: ये रातें

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा गीत।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

सुनिए और सुनाइए रेडियो विविधता, सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

आइए कुछ अच्छा सुनते हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता पर। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों बोजन एफएम नमत आशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हुन बोजन रूजियो पनिन पसंदीदा बगत।

यू आर एंजॉयिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का एक कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए

0: अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: नब्बे आशारिया सिफर FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

फिल्मी गीतों का ये सफर आप तय करेंगे अपने रेडियो दोस्त रमेश मराठा के साथ। आदाब।

तुझ से लफ्जों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तू मेरी सांसों में बसी है खुशबू की तरह।

ये दिल लगी कहीं छूट न जाए पीछे, क्योंकि अपनी दुआओं में मैं रब से सिर्फ तुम्हें मांगता हूं। हर पल चुरा लेता हूं तुम्हें तुम्हें से। इन शामों में यहीं पे आकर तुम्हें ढूंढता हूं, तुम्हारा इंतजार करता हूं बर्फ पिघलने तक। इन मौसमों के गुम हो जाने तक कहीं ये दिल लगे ना छूट जाए। चश्मे पुर आपको समंदर लिखूं या न लिखूं, तुमसे नजरें मिला के बार बार ये ख्याल आया।

जिंदगी यूं ही गुजर गई बिना बात कहे। इस अंजमन में बातें हुई पर वो बात रह गई जो सीने में दफा।

काश कोई सुनने के लिए फिर से मुझे आवाज देता, मुझे पुकारता, मुड़ के देखता, ठहरता चंद पलों के लिए। शायद शायद मैं अपनी बात कह पाता।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 24, सफलता की कहानियां। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रयोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया आरजे किन्नी ने और रिकॉर्ड एडिट व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने।
1: हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक मिशन था, एक ऐसा प्रयास जिसने न केवल हमारे बुजुर्गों की आवाजों को सुनने का मंच दिया बल्कि उनके अनुभवों, संघर्षों और सपनों को भी समझने की कोशिश की। ये केवल शब्दों का संगम नहीं था बल्कि भावनाओं की गहरी नदी थी जो हमारे श्रोताओं के दिलों तक बहती रही। एक ऐसा सफर जिसमें हमने हर पड़ाव पर बुजुर्गों की तकलीफों को सुना, उनकी उम्मीदों को जाना और उनके अनुभवों से कुछ नया सीखा। आज जब हम इस सफर के 24वें और अंतिम एपिसोड के मुकाम पर खड़े हैं, तो दिल में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही हैं। एक तरफ संतोष कि हमने कुछ सार्थक किया और दूसरी तरफ हल्की सी उदासी कि ये प्यारा सफर अब समाप्ति की ओर है। इस पूरे सफर को संभव बनाने का श्रेय जाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन को, जिन्होंने इस पहल को देश भर की लगभग 200 रेडियो स्टेशनों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन 3-4 महीनों में जो रिश्ता हमने अपने श्रोताओं से जोड़ा वो किसी औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रहा। ये एक ऐसा टूट बंधन बन गया जिसमें ना सिर्फ ज्ञान और जागरूकता थी बल्कि अपनापन, प्यार और एक दूसरे के लिए चिंता भी थी। ये रिश्ता केवल रेडियो तरंगों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसमें भावनाओं की मिठास, अपन तत्व की गर्मी और प्रेम की कोमलता भी जुड़ गई। हमने देखा कि कैसे हमारे बुजुर्ग जो कभी अपने परिवार और समाज की रीढ़ हुआ करते थे, उम्र के इस पड़ाव में अक्सर अकेलापन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। हमने सुना उन बुजुर्गों की कहानियाँ जिन्होंने अपनी जिंदगी हर लम्हा अपने परिवार और समाज को समर्पित कर दिया लेकिन अब खुद को असहाय और अकेला महसूस कर रहे थे। हमने जाना कि आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याएं, मानसिक तनाव और सामाजिक उपेक्षा, ये 4 बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमारे बुजुर्ग अक्सर जुड़ते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा कि जब सही जानकारी, सही समय और सही प्रयास मिल जाए तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। हमारे इस कार्यक्रम ने न केवल बुजुर्गों को जागरूक किया बल्कि उन्हें ये भरोसा भी दिलाया कि वे अकेले नहीं हैं। हमने उन्हें सरकारी योजनाएं, पेंशन स्कीमों, स्वास्थ्य सुविधाएं और कानूनी अधिकारों को जानकारी दी लेकिन इससे भी बढ़कर हमने उन्हें ये एहसास दिलाया कि उनकी उपस्थिति, उनके अनुभव और उनकी कहानियाँ अमूल्य है। वे न सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत है। आपके अनगिनत फोन कॉल्स, संदेश और प्रतिक्रियाओं से इस बात का प्रमाण है कि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान महज एक रेडियो कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि ये एक ऐसा भावना बन चुका है जिसने हर दिल को छुआ। ये उन बुजुर्गों के लिए एक संबल बना जो किसी न किसी समस्याएं से जुड़ रहे थे।

0: ना चाहा, यही सब कुछ आज हम आपके सामने पेश करेंगे।
1: बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हीलचेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, आपके अपने इस प्यारे रेडियो स्टेशन FM 90.0 MHz पर। मैं हूं आपका दोस्त भरत और मेरे साथ है मेरी प्यारी पोती लक्ष्मी।
3: जी दादाजी, और आज का एपिसोड बेहद खास है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे इस प्रयास ने वास्तव में बुजुर्गों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए हैं।
2: बिल्कुल लक्ष्मी, हमने अब तक न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि उन बुजुर्गों की कहानियां भी सुनवाई जिनकी जिंदगी में इन योजनाओं ने रोशनी भरी। आज हम उन्हीं से सुनेंगे कि कैसे इस कार्यक्रम ने उनकी दुनिया बदल दी।
3: और हाँ दादाजी, आज हमारे पास कुछ बहुत ही खास मेहमान भी है जो अपने अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए इस अंतिम एपिसोड में जानते हैं उन सच्ची कहानियों को जिन्होंने ये साबित किया कि जब सही जानकारी, सही समय और सही प्रयास मिल जाए तो हर बुजुर्ग का जीवन सम्मान और सुकून से भरा हो सकता है। तैयार है?
2: हमारे इस खास एपिसोड में पहली कहानी हमारे एक बुजुर्ग मित्र की है, जिन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठाकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। जब हमने पहली बार इनसे मुलाकात की थी तब परिस्थितियां कुछ और थी, लेकिन अब उनकी कहानी एक मिसाल बन चुकी है जो बताती है कि अगर सही समय पर सही जानकारी और समर्थन मिल जाए तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। तो आइए देर न करते हुए हम सीधे उन्हीं से सुनते हैं कि उनका अनुभव कैसा रहा। हमारे साथ है आदरणीय श्री प्रवीण जी, जो अपनी यात्रा को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए तैयार हैं।
4: मैं प्रवीण अंबाला छावनी का निवासी हूं, समाज सेवा के कार्य भी करता रहता हूं। रेडियो FM 90.0 पर हमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिली। इसमें वृद्धजनों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में पता चला। हालांकि मैं अभी काम कर रहा हूं और आगे भविष्य को लेकर विभिन्न योजनाओं का पता, जो समाज में वृद्धजनों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, भारत सरकार की ये योजनाएं हम समाज में वृद्धजनों को बहुत सहायक सिद्ध हो रही है। इसमें एक सरकार द्वारा एल्डर हेल्पलाइन 14567 के बारे में भी पता चला। रेडियो वितस्ता का प्रोग्राम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान के दो किरदार भरत दद्दू और पोती लक्ष्मी हमारी जिंदगी का हिस्सा और मार्गदर्शक बन गए हैं। भारत सरकार की ओर से ये योजनाएं एक सहारा है कि अगर वरिष्ठ नागरिक होने के बाद अगर बच्चों का साथ ना भी हो तो भी ये योजनाएं सम्मान के साथ जीने के लिए बहुत लाभदायक रहेंगी। जब हम समाज में लोगों की मदद के लिए जाते हैं तो बहुत कठिनाइयां आती हैं। सरकार

0: सरकार की इन योजनाओं के द्वारा हम आगे लोगों की बहुत मदद कर सकते हैं, उन्हें कुछ सहारा देने में, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने में मदद कर सकते हैं और आने वाले दिनों में उनका समय जरूर बदल सकता है। मैं रेडियो वितस्ता का इस प्रोग्राम के लिए बहुत आभारी हूं और अपना धन्यवाद देता हूं।
1: प्रवीण जी, आपके शब्दों में अनुभव, संघर्ष और सफलता की जो कहानी छुपी है वो न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हर उस बुजुर्ग के लिए उम्मीद की एक किरण भी है जो अपने जीवन में किसी न किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं। आपने जिस साहस और धैर्य के साथ इन परिस्थितियों का सामना किया वो वाकई काबिले तारीफ है। ये सुनकर हृदय गदगद हो जाता है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की इस योजना ने आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाया। आपका धन्यवाद जो आपने अपनी यात्रा को हमारे साथ साझा किया और हमारे श्रोताओं को ये बताया कि सही मार्गदर्शन और संकल्प के साथ हर मुश्किल आसान हो सकती है। हमें गर्व है कि हमारा ये कार्यक्रम आपके जीवन में एक छोटी सी प्रेरणा बन सका। आशा करते हैं कि आपकी ये कहानी अन्य बुजुर्गों के लिए भी रोशनी का एक दीपक बनेगी और उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगी।
2: कहा जाता है कि बुजुर्ग का स्वभाव एक बच्चे की तरह हो जाता है, इसलिए अक्सर उनके कार्यकलापों पर घर के लोग समझौते नहीं कर पाते हैं, उनको झिड़क देते हैं, डांट भी देते हैं, नसीहत भी देते रहते हैं। मुझे लगता है दादाजी कि कई बार घर के हर उम्र के सदस्य उनको समझ नहीं पाते हैं, उनके मन की भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं।
1: ऐसे में घर के बुजुर्ग शांत से हो जाते हैं और खुद को व्यस्त रखने के लिए जहाँ खुशी मिलती है जुट भी जाते हैं। लेकिन तुमने इस बात का जिक्र क्यों किया?
2: एक सच्ची घटना है जिसको ऋतु कौशिक ने अपनी आवाज में बुजुर्गों को समझो शीर्षक के साथ हम तक पहुँचाया था, सुनवाती हूँ।
3: हेलो जिंदगी, जिंदगी की बात आपके साथ। हेलो जिंदगी में मैं ऋतु कौशिक। उन दिनों खुद से एक वादा किया था, रोज सुबह प्यारी नींद को त्याग मॉर्निंग वॉक पर जाने का। पता था कि ज्यादा दिन नहीं निभा पाऊंगी क्योंकि सुबह की नींद मुझे बहुत प्यारी थी, पर घर वालों ने मेरे इस आलस पर इतने ताने मारे कि मुझे इसे चैलेंज के रूप में लेना पड़ा। पर इस चैलेंज में मैंने स्वास्थ्य लाभ किया या नहीं ये तो नहीं पता, पर और बहुत कुछ सीखा जो आपसे बांट रही हूँ। उन दिनों मैंने एक आंटी को नोटिस किया जो थोड़ा घूमती और फिर कोने वाली बेंच पर बैठ जाया करती। थोड़ा दिमाग पर जोर डाला तो याद आया कि उन्हें मैंने देखा है अपनी एक सहेली के घर के पास। मैं रोज उन्हें देखती रहती, वो चुपचाप शून्य में निहारती रहती जैसे उनके जीवन का सत्य बस खालीपन हो। पार्क के सबसे कोने वाली बेंच पर जहाँ पेड़ की घनी छांव पड़ती थी वहीं रोज बैठती। उनके घर के पास ही मेरी सहेली रहती थी। मैं खुद को रोक न पाई उससे उन आंटी के बारे में पूछने से। सहेली ने बताया कि वो अपने बेटे बहू के साथ रहती है, कुछ खास बनती नहीं उनकी, पति गुजर चुके हैं। ये मेरा रोज का रूटीन था। अब भी आंटी शून्य सी एक और देखती रहती, निराश हताश। मन किया कि उनके पास जाऊं और पूछूं कि क्यों उदास है, फिर लगा कि क्या सोचेंगी, पर अंदर से आवाज आई कि कम से कम उनसे मिलना तो चाहिए, शायद वो खुद ही बता दे और मैं उनकी मदद कर पाऊं। ये सोचकर मेरे कदम उस बेंच की ओर बढ़ गए। जैसे ही उनके सामने जाकर मैं खड़ी हुई, मुझे पहचानने की कोशिश करने लगी और अचानक मेरी तरफ उंगली उठाकर बोली, अरे तुम तो सुधा की सहेली हो ना, मैंने बहुत बार देखा है तुम्हें उसके घर। आंटी मुझे खुद ही पहचान गई थी, अब मेरे लिए आसानी हो गई थी। मैं उनके पास बैठ गई और कहा, जी मैं सुधा की सहेली ही हूँ, मैंने भी आपको कई बार देखा है वहाँ। फिर आंटी से कई औपचारिक बातें हुई, पढ़ाई की, घर की और इधर उधर की। अच्छा लगा उनसे बात करके, पर उन्होंने और कुछ नहीं बताया, शायद घर की बात बाहर नहीं करना चाहती थी। और वैसे भी ज्यादातर बाहर वाले किसी की मुश्किल को हल करने के बजाय मजाक ज्यादा उड़ाते हैं, इसलिए हर किसी से मन की बात बांटना ठीक नहीं होता। और मैं तो उनसे अभी अभी मिली थी, मुझे भला वो क्यों बताती।
4: फिर दो दिन तबीयत खराब के कारण मैं वॉक पर नहीं जा पाई। तीसरे दिन निगाह आंटी को ही ढूंढ रही थी। नजर इधर उधर दौड़ाई तो आंटी बेंच पर ही थी और उनके पास ही बेंच पर एक अंकल भी थे। उन्हीं के हम उम्र, सर पर कैप थी। वो आंटी से बात कर रहे थे ऐसे जैसे बहुत पुराने दोस्त हों। मैंने पहली बार आंटी के चेहरे पर वो निश्चल हंसी देखी, खिलखिलाती हंसी जो सब कुछ लुटा देने पर भी नहीं मिलती। मैं उनके पास गई, आंटी ने मेरा परिचय कराया। इनसे मिल बेटा, ये मेरे कॉलेज के सहपाठी हैं, मिस्टर वेदांत मिश्रा। बहुत बड़े प्रोफेसर थे, अब रिटायर्ड हैं, रिटायरमेंट के बाद यहाँ आए हैं। मैं तो इतने सालों बाद अचानक पहचान ही नहीं पाई। अंकल भी बहुत कमाल की बातें करते थे, परिवार के साथी थे वो भी। उन्होंने अपने कॉलेज टाइम की बातें सुनाकर बहुत हंसाया और आजकल के युवा लड़के लड़कियों की लाइफ को उस जमाने से कंपेयर भी किया। आजकल के बच्चों के संस्कारों से वो बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में ज्यादा नहीं बताया, नहीं मैंने पूछा। मैं तो बस आंटी को खुश देखकर खुश थी। अब मैं मॉर्निंग वॉक के लिए कम और उन दोनों से मिलने ज्यादा जाया करती। आंटी की जिंदगी को जैसे पंख लग गए थे। हमेशा चुपचाप बैठकर शून्य को घूरने वाली एकदम से हंसी से परिचित होने लगी थी। उनके होठ फिर से मुस्कुराना सीख गए थे। जिंदगी में जैसे एक नई सी ऊर्जा आ गई थी और ये नयापन आया था उस पुरानी दोस्त की वजह से। मैं आंटी के लिए बहुत खुश थी। अक्सर उन दोनों के बीच बैठकर मैं भी उनकी मजेदार बातों का हिस्सा बनती। कैसे वो क्लास में दोस्तों के साथ मस्ती करते, कैसे टीचर्स को तंग करते, एग्जाम्स के दिनों की टेंशन, पास होने पर सेलिब्रेशन, दुख सुख में दोस्तों का साथ, हॉस्टल में वार्डन का रौब, कितना कुछ था उनके पास बांटने को। एक दिन मैं जब पार्क पहुंची तो आंटी दिखाई नहीं दी। लगा कि तबीयत ठीक नहीं होगी। बड़ी बेचैनी रही पूरे दिन। उन दोनों से इतना लगाव हो गया था कि दो दिन न टिक पाने वाली मेरी मॉर्निंग वॉक को महीना होने वाला था। खैर, रात मैंने जैसे तैसे काटी। सुबह पहुंची तो न आंटी थी न अंकल। अब कुछ घबराहट से हुई, सहेली को फोन लगाया। आंटी के बारे में पूछा तो बोली, पूछ मत यार, उनके बेटे बहू ने बहुत हंगामा किया। बोली कि इस उम्र में आपको ये सब करते शर्म नहीं आती? किसी से मिलने पार्क में जाती हैं आप, आज के बाद नहीं जाना आपको। ओह गॉड, बस इतना ही निकला मेरे मुंह से। मतलब अंकल आंटी को किसी ने साथ देखा और जाकर उनके बेटे को उल्टी सीधी बात बता दी और बेटे ने भी बिना सोचे समझे माँ को फैसला सुना दिया। कैसी दुनिया है ये भगवान, जहाँ लोगों को बस गंदगी दिखाई देती है। शायद अंकल के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे बार बार आंटी का वो निराशा से भरा चेहरा और फिर खिलखिलाता चेहरा याद आता और मैं तिलमिलाकर रह जाती। अरे अगर अपने पुराने साथी से चंद बातें करके दो पल हंस लेता है कोई, तो किसी को क्या समस्या हो सकती है उससे? बस पुरुष स्त्री का एक ही रिश्ता है क्या दुनिया में? मैं अपने अंतर्मन से सवाल किए जा रही थी और झुंझलाई जा रही थी लोगों की मानसिकता पर। दूसरे दिन अनचाहे कदमों से गई पार्क में तो अंकल बैठे थे, मुझे देख खुश हुए और आंटी के बारे में पूछा कि सब ठीक है ना। मैं उनसे कुछ नहीं छुपा पाई। सुनकर बोले, बेटा ये दुनिया ऐसी ही है, किसी के लाख रोने पर भी पास नहीं आता कोई, और कोई खुश हो तो उनसे देखा नहीं जाता। बेचारी शकुंतला, मेरे कारण क्या क्या सुनना पड़ा उसे। कॉलेज टाइम में कितने अच्छे दोस्त थे हम। मैं उसके घर जाता और वो परिवार सहित मेरे घर आया करती। दोनों परिवारों में कितना प्यार था। उसके पिता मुझ पर अपने बेटे जितना विश्वास करते थे। आज ये सब सुनते तो क्या होता। छी, कितनी गंदगी भरी है लोगों के दिमाग में, कहकर वो धम्म से बेंच पर बैठ गए। मैं उन्हें देखती रही अविचल लगातार। कोई मदद भी तो नहीं कर सकती थी उनकी। एक दो आदमी से लड़ना होता तो लड़ जाती, पर इस दुनिया से कैसे लड़ती। सोए हुए लोगों को तो जगा देती, पर जागते लोगों को कैसे जगाती। भारी मन से वापस आ गई ये सोचते हुए कि काश उम्र के इस पड़ाव पर घर में उस घुटन भरी जिंदगी की बजाय वो भी अपने मुताबिक सुकून की सांसें ले पाते। काश उनके चेहरे पर वो निश्चल मुस्कान खिली रहती। काश बिना किसी रिश्ते में बांधे लोग दो दोस्तों को अपनी जिंदगी जीने देते। इस कहानी का अंत इसी काश के साथ हो जाता, मगर मैंने होने नहीं दिया। मैंने अंकल और आंटी की कहानी सुधा को बताई, उनके पारिवारिक संबंधों के बारे में बताया। सुधा मुझे लेकर आंटी के घर गई। जैसे ही दस्तक दी, आंटी का चेहरा खिल उठा मुझे देखकर। बड़ी आत्मीयता से मिली मुझसे। उनके बेटे बहू भी आ चुके थे, वो भी उसे छोटी बहन की तरह मानते थे। इतना अपनापन था दोनों घरों में कि आपस में कुछ पूछ या समझा सके। सुधा ने उन्हें अंकल के पास्ट के बारे में बताया और आंटी के मम्मी पापा के साथ अंकल के संबंध एक बेटे जैसे थे ये भी बताया। कितनी आत्मीयता और अपनापन था दोनों परिवारों में ये जानकर उनके बेटे को बहुत पछतावा हुआ। उसने आंटी से भी माफी मांगी और अंकल से भी। अंकल ने उसके सर पर हाथ फिरते हुए कहा, बेटा हमेशा सच्चाई की राह पर चलो और बेवजह किसी से मत डरो। आज आलम ये है कि अंकल पार्क में ही नहीं आंटी के घर भी आते हैं। सब साथ बैठकर कुछ खुशनुमा पल साथ बिताते हैं और उन्हें खुश देख मेरा मन भी खुशी से भर जाता है। इस कहानी को तो मैंने सुखांत में बदल दिया, पर हर कहानी का ये अंजाम नहीं होता, खासकर ऐसी कहानियों का जिसमें जीवन की शाम में तन्हा बैठे बुजुर्ग किसी से अपने मन की बातें साझा करने की राह तकते हैं, फिर वो उनकी संतान हो, उनके अपने हो या फिर कोई दोस्त। और ऐसे में सिर्फ इसलिए कि वो स्त्री और पुरुष हैं, उन पर उंगली उठाकर उनसे थोड़ा सा मुस्कुराने का हक छीन लेना कहाँ तक उचित है, जरा सोचिए।
1: सचमुच बड़ी मार्मिक घटना का जिक्र था इसमें, लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान कार्यक्रम श्रृंखला के 24 एपिसोड्स सुनने के बाद हमें लगता है देश के बहुत सारे घरों के सदस्यों को कई बातें समझ में आई होंगी। योजनाओं के साथ साथ बुजुर्ग के सम्मान में अपना अभिमान समझने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई होगी।
2: दादाजी सच कहूँ तो जितना हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गों की कहानियाँ सुन रहे हैं, उतना ही मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये योजनाएं हमारे समाज में कितनी जरूरी है। अभी जो कहानी हमने सुनी वो सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन सोचिए ऐसे कितने ही दादा दादी नाना नानी होंगे जो बस किसी सहारे, किसी मदद, किसी उम्मीद की तलाश में है। जब तक उन्हें ये मदद नहीं मिलती तब तक उनकी जिंदगी में निराशा का अंधेरा छाया रहता है, लेकिन जैसे ही कोई योजना उनकी मदद करती है, जैसे ही उन्हें महसूस होता है कि वे अकेले नहीं है, बस वही से उनकी जिंदगी में एक नई रोशनी, एक नई ऊर्जा आ जाती है।
1: बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी, मैं तो कहता हूँ बुजुर्ग हमारी समाज की रीढ़ की हड्डी है, उनके बिना ये समाज अधूरा है। हम सब उन्हीं के अनुभवों से सीखकर बड़े हुए हैं, लेकिन जब उनकी जरूरतों का समय आता है तब अगर हम मुंह मोड़ लें तो ये समाज भला आगे कैसे बढ़ सकता है। ये योजनाएं कोई दान या एहसान नहीं है, बल्कि ये हमारे बुजुर्गों के अधिकार है। सरकार द्वारा चलाई गई ये पहल उन्हें वो आत्मसम्मान और सुविधा देती है जिनकी उन्हें नितांत आवश्यकता होती है।
2: सच में दादाजी, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये योजनाएं सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि इनमें बुजुर्गों के संपूर्ण जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। मसलन कुछ योजनाएं उन्हें आर्थिक सहायता देती है, कुछ उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, तो कुछ उनकी सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अब डिजिटल इंडिया के तहत भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि बुजुर्गों को सरकारी सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सके।
1: और अब हम अपने कार्यक्रम में एक बेहद खास मेहमान को आमंत्रित कर रहे हैं, जिनका योगदान इन योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में बेहद अहम रहा है। हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला सामाजिक कार्य अधिकारी, जो लगातार ये सुनिश्चित करने में जुटे रहते हैं कि सरकार की ओर से चलाई जा रही लाभकारी योजनाएं सही तरीके से उन बुजुर्गों तक पहुंचे जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि वास्तविक जीवन में इनका प्रभाव दिखे, यही इनका मुख्य उद्देश्य है। आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। इस समय हम आए हैं अंबाला सिटी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास। हम यहां इस समय बात करेंगे मैडम सुरजीत कौर जी के साथ, जानते हैं वो अटल वायु अभ्युदय योजना के बारे में क्या कहते हैं।
5: थैंक यू एंड वेलकम सर। थैंक यू इसलिए सर कि अटल वायु अभ्युदय योजना ये हमारे डिपार्टमेंट सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट से ही स्पॉन्सर्ड है। और मुझे अच्छा लगा कि इसी फील्ड में जो है डिपार्टमेंट काम कर रहा है हमारा, सीनियर सिटीजन्स को लेकर जो ये योजना है, जैसे जैसे इसमें पहले दिया हुआ था कि इसमें दिया हुआ है कि नेशनल एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन्स के नाम से जानी जाती थी, और अभी आपका इसको रीनेम किया गया है। बेसिकली जहाँ तक मैंने इसको स्टडी किया है या थोड़ा बहुत जानती हूँ सर, कि ये सीनियर सिटीजन्स को हेल्प के लिए, और जो एक एल्डरली मतलब लोगों को जो एक एज के बाद जो असिस्टेंस चाहिए और वो असिस्टेंस को कैसे अवेल कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे तो जो भी हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हैं, एसडीएम लेवल्स पे हैं, सब अवेयरनेस के लिए काम कर ही रहे हैं सर। और यहाँ मिलके जैसे हमारा जो रेड क्रॉस है वो भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर में अगर आप अम्बाला में ही काम कर रहे हैं तो दो एल्डरली के लिए हमारे पास ओल्ड एज होम भी चल रहे हैं सर। और बेसिकली जो डील करते हैं हम पेंशन स्कीम्स के अंदर करते हैं, उसकी अवेयरनेस के लिए भी हम काफ़ी काम कर ही रहे हैं, अवेयरनेस के लिए जैसे कैंप लगाते हैं, और अब तो सब कुछ जो है पहले CSC के थ्रू था, अब ऑनलाइन है। और ये अच्छा लगा एक जो आप लोगों ने हेल्पलाइन नंबर इसमें और दे दिया है 14567, जिसपे आप डायल करके अगर कोई भी वंचित इस हमारी पेंशन स्कीम से, या एल्डरली के लिए मान लो कोई होमलेस है, या उसको कोई आपने इसमें दिया हुआ है कि जो भी फैसिलिटी आप चाहे उनके हेल्थ से रिलेटेड है, उनकी वेलबींग से रिलेटेड, उनको हेयरिंग एड चाहिए है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, तो अगर वो अप्रोच नहीं कर सकते हैं हम तक, तो ये इस जो हेल्पलाइन नंबर से उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा है कि वो वहीं से डायल कर सकते हैं। और दूसरा सर इसमें मैं ये भी कहूँगी कि अगर कोई होमलेस है तो हमारे वहाँ पे कैंट में आपकी भी नॉलेज में होगा एक जो ओल्ड एज होम चल रहा है जो होमलेस के लिए ही है, तो हम वहाँ भगवान ना करें वैसे किसी को ये जरूरत पड़े, लेकिन हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो होमलेस हैं और उनके जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बेटर है, तो अच्छा है मिलजुल के इस उस पे काम करते हैं। हम तो एल्डरली पे काम कर ही रहे हैं, और आप भी बहुत अच्छा है एक इनिशिएटिव है ये सर, ऑल द बेस्ट।
1: मैडम जैसे एक सामुदायिक रेडियो लोगों तक पहुंचता है रेडियो के माध्यम से, सामुदायिक रेडियो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, जैसे हम FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता हैं, अम्बाला के लिए हम काम करते हैं और हम अम्बाला के लोगों तक आपकी बात पहुंचाते हैं, और हम भी जो कोई भी स्कीम होती है, कोई भी भारत सरकार की या राज्य सरकार की ओर से जो भी स्कीमें होते हैं वो हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरमेंट की ओर से हमें ये कहा गया है कि ये 24 एपिसोड्स में हमने इस बात को अलग अलग स्कीम्स सीनियर सिटीजन तक पहुंचानी है, तो मैं ये चाहूंगा कि आपका भी सहयोग रहे और आपके माध्यम से भी हम लोगों को कनेक्ट कर पाए।
5: डेफिनेटली सर हम आपके साथ हैं और हम अपना बेस्ट कर रहे थे, और आपके साथ मिलकर हम जो भी है जितनी भी हमारी डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं हम तो उनके साथ, आप एल्डरली पे कर रहे हैं, एल्डरली के साथ साथ जो दूसरी भी स्कीम्स हैं उनकी भी अवेयरनेस आपके साथ इससे और ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो वंचित हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। हम डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, और ऐसे ही हम उम्मीद करेंगे आपसे सपोर्ट की। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
6: पहले के समय में बुजुर्गों को अपने हक के लिए दफ्तर दफ्तर भटकना पड़ता था, कई बार तो लंबी कतारों में खड़े रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता था, और कुछ तो इतनी तकलीफ में होते थे कि आवेदन भी नहीं कर पाते थे। लेकिन अब सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि अधिकतर योजनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो, ताकि जरूरतमंद बुजुर्ग घर बैठे ही इन सुविधाओं का लाभ उठा सके। और ये सब संभव हो पाया है समाज में जागरूकता बढ़ने के कारण। जब तक हम खुद इन योजनाओं के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम अपने आसपास के बुजुर्गों को इनके लाभ नहीं दिलवा सकेंगे।
2: हाँ दादाजी, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। कई बार तो ऐसा होता है कि योजनाएं होती हैं, सुविधाएं भी उपलब्ध होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में हमारे बुजुर्ग उन तक पहुंच ही नहीं पाते, और अगर ये आवेदन करने के लिए किसी से मदद मांगे तो कभी कभी लोग उन्हें गुमराह भी कर देते हैं, ये वाकई दुखद है।
6: तभी तो हमारा ये कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है, हमें अपने श्रोताओं के माध्यम से ये संदेश देना है कि अगर आपके आसपास कोई बुजुर्ग है जिन्हें इन योजनाओं की जानकारी नहीं है तो उनकी मदद कीजिए,
1: उन्हें बताइए कि सरकार ने उनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी हैं, और अगर वे खुद आवेदन करने में असमर्थ हैं तो उनके लिए आगे आए, क्योंकि लक्ष्मी हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होती। अगर हम एक सभ्य समाज बनाना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोस, अपनी गलियों और अपने शहरों में रहने वाले बुजुर्गों का भी उतना ही ख्याल रखना होगा जितना हम अपने परिवार के बुजुर्गों का रखते हैं।
2: बिल्कुल दादाजी, और इसी सोच के साथ हमें अपनी इस पहल को आगे बढ़ाना होगा। आज जब हम इस अंतिम एपिसोड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये कार्यक्रम यहीं समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। हमने जो ज्ञान अर्जित किया, जो कहानियां सुनी, जो सीख मिली, उन्हें अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ये बदलाव तभी संभव होगा जब हम न सिर्फ सुने बल्कि अपनी ओर से एक छोटा सा कदम भी उठाएं।
1: वाह लक्ष्मी, क्या बात कही है तुमने। यही तो असली भावना है इस कार्यक्रम की, सिर्फ बातें नहीं बल्कि कार्रवाई भी। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे अगले मेहमान इन योजनाओं के बारे में हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं।
2: दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम कुछ और प्रेरणादायक कहानियां सुनें उन बुजुर्ग दोस्तों से जो न केवल इन योजनाओं के लाभार्थी हैं बल्कि हमारी प्रेरणा भी है। जब हम किसी योजना के बारे में सुनते हैं तो ये जानना भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि इसका असली असर जमीन पर कैसा हो रहा है। क्या ये योजना वास्तव में हमारे बुजुर्गों के जीवन में बदलाव ला रही है? क्या उनका दैनिक जीवन पहले से बेहतर हुआ है? इन्हीं सब सवालों के जवाब हमें मिलेंगे सीधे उन बुजुर्गों से जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया है और अपने जीवन को नई दिशा दी है। हम स्वागत करते हैं श्री नरेंद्र जी का, जो हमें अपनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। नरेंद्र जी न केवल इस योजना के लाभार्थी हैं, बल्कि हमारे अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। नमस्कार नरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। कैसी तबीयत है आपकी?
7: अरे भाई नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सच कहूँ तो जब पहली बार मैंने इस योजना के बारे में सुना था तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि सरकार सच में बुजुर्गों के लिए इतना कुछ कर रही है। हमें तो हमेशा यही लगता था कि बुजुर्गों को उनकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब मैंने खुद इस योजना के लिए आवेदन किया और फिर हर महीने मेरी पेंशन मेरे खाते में आने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि बदलाव सच में आ रहा है। पहले किसी न किसी से मदद मांगनी पड़ती थी, घर के छोटे मोटे खर्चों के लिए भी बेटे बहू के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब से यह पेंशन मिलने लगी है मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब तो मैं अपनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी कर सकता हूँ। अगर चाय पीने का मन हो तो खुद जाकर चाय की टपरी पर बैठकर दोस्तों के साथ गप्पे भी मार सकता हूँ। यहाँ तक कि पिछले हफ्ते मैंने अपनी नातिन के लिए एक छोटा सा तोहफा भी खरीदा। पहले यह सब करना मुश्किल था क्योंकि हर खर्च को सोच समझकर करना पड़ता था। अब मैं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर महसूस करता हूँ। जीवन में एक नई ऊर्जा आ गई है। जब इंसान आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है तो उसकी इज्जत भी बनी रहती है। अब तो मेरे पोते पोते भी मुझे बोलते हैं, दादू आप तो बहुत कूल हो गए हो। तो बस यह पेंशन नहीं, मेरे लिए सम्मान की पेंशन है।
1: वाह नरेंद्र जी, सच में आपकी ये कहानी सुनकर दिल खुश हो गया। आपने बिल्कुल सही कहा, आर्थिक आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों की बात नहीं होती बल्कि ये आत्मसम्मान और स्वाभिमान की बात होती है। जब इंसान अपने दम पर अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है तो उसका आत्मविश्वास भी दुगना हो जाता है। और आपकी ये बात सुनकर मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बुजुर्ग इस समय हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके अंदर भी ये प्रेरणा जागी होगी कि वो भी इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन को पहले से बेहतर बनाएं।
2: और दोस्तों, ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे देश में ऐसे लाखों बुजुर्ग हैं जो इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। और अपने जीवन को नए जोश के साथ जी रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई बुजुर्ग है जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें इसके बारे में बताएं और उनकी मदद करें। तो नरेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, अगर आपको इस योजना के बारे में पहले ही पता चल जाता तो क्या आपको लगता है कि आपका जीवन और पहले से बेहतर हो सकता था?
7: अरे भाई बिल्कुल, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैं इतनी चिंता में नहीं रहता। कई सालों तक तो मैं सोचता था कि बुजुर्ग होने का मतलब सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना है, लेकिन अब समझ आया कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो बुजुर्ग भी अपने जीवन को सम्मान और खुशी से जी सकते हैं। इसलिए मैं सभी बुजुर्गों से कहना चाहूँगा, डरिए मत, शर्माइए मत, यह आपका अधिकार है और जब सरकार आपके लिए इतना कर रही है तो आपको भी आगे बढ़कर इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए।
1: बहुत ही बढ़िया बात कही आपने नरेंद्र जी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी ये प्रेरणादायक कहानी हमारे साथ साझा की। आपकी बातों ने आज बहुत से श्रोताओं के दिलों को छू लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह खुश और स्वस्थ रहें और जब भी आप आए हम आपको चाय का कप जरूर पिलाएंगे।
7: बिल्कुल भरत भाई, और वो भी कड़क चाय। धन्यवाद।
8: सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहाँ उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।
1: तो दोस्तों, सुना आपने नरेंद्र जी की यह प्रेरणादायक कहानी, हमें सिखाती है कि उम्र के किसी भी पड़ाव पर आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान जरूरी है और ये संभव है अगर हम सही जानकारी लें और उन सरकारी योजनाओं का सही लाभ उठाएं। अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे आप या आपके परिचित इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं।
2: आज का ये खास कार्यक्रम सिर्फ सूचनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन जिंदगियों की सच्ची कहानियों को आपके सामने लाने का प्रयास है जो इन योजनाओं से बदल गई है। आज हम आपको उन बुजुर्गों से मिलवा रहे हैं जिनसे पिछले 3 महीने में हमारे रेडियो की टीम ने खुद जाकर मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनके अनुभव साझा किए और सबसे अहम बात, उनके जीवन में आए बदलावों को करीब से महसूस किया। ये वे लोग हैं जिन्होंने न केवल सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया बल्कि अब वे आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जी रहे हैं।
1: हमारी टीम ने शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर ये जाना कि बुजुर्गों की जिंदगी में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमने देखा कि कई बुजुर्ग ऐसे थे जो पहले आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य समस्याओं और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें सही समय पर सही मदद मिली, चाहे वो फाइनेंशियल एडवाइस हो, एक्सपर्ट की सलाह हो, पेंशन हो या फिर हेल्थ सपोर्ट, तो उनका जीवन ही बदल गया। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन बुजुर्गों से जिनकी जिंदगी में आया है एक नया उजाला।
9: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता। आज हम आए हैं अपना घर, जो अंबाला कैंट में स्थित रोटरी हॉस्पिटल के पास है। राज्य सरकार और रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से इस अपना घर को चलाया जाता है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हमारे वृद्ध जन है जो यहाँ पर रहते हैं उनसे हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं श्री गजन सिंह जी। गजन सिंह जी से हम बात करेंगे और सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप यहाँ कब से हैं और यहाँ आपका जो जीवन है किस तरीके से व्यतीत हो रहा है।
10: मैं गजन सिंह लटम्बा गांव धूलकोट का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ 25/3/2015 को आया था। जब से मैं आया हूँ तब से तकरीबन यहाँ खाने पीने की सहूलत है, डॉक्टरी की सहूलत है, कपड़े की सहूलत है, जो खाने पीने की चीजें हैं तकरीबन हमारे पास बहुत कुछ आता है। हमारे जो इंचार्ज हैं वो भी बहुत गुड है और बहुत हमारा ध्यान रखते हैं। जिस वक्त हम यहाँ आए थे उस वक्त तो आमदनी भी कम थी क्योंकि 7-8 आदमी थे। हम यहाँ 26 लोग हो गए थे जिसमें से कुछ लोग भगवान को प्यारे हो गए। अब यहाँ 20 लोग हैं और 20 को तकरीबन खाना अच्छा मिलता है। सुबह लेडीज आती है, ब्रेकफास्ट देती है, खाना बनाती है, 12 बजे चली जाती है। दूसरी लेडी 5 बजे आती है, 7:30-8 बजे वो बना के चली जाती है। यहाँ पर एक सरदार जी हैं जो 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उनकी ड्यूटी जो है बहुत सख्त है। जो सामान आता है वो लिखते हैं, खाने वाला खाने का बांट दिया जाता है, राशन जो है अंदर रख दिया जाता है। बाकी हमें कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है, हम घर से ज़्यादा खुश हैं यहाँ। घर में इतनी हमें सहूलत नहीं थी और हम क्यों आए हैं ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि घर की कई समस्याएं होती हैं, हर आदमी को नहीं बताया जाता। घर घर में ऐसा है और आज से 20 साल पहले ये चीज़ ना थी और ना हमने सुना था।
9: गजन सिंह जी, हम ये जानना नहीं चाहेंगे आप यहाँ क्यों आए। आप जब यहाँ पर आए हैं तो क्या यहाँ पर आप इज्जत सम्मान से रह रहे हैं? जो घर में परेशानी थी वो परेशानी मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे नहीं होगी, तभी हम घर के बाद हम इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ हम अपनी सुविधा के साथ रहते हैं। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जिनकी जिम्मेदारी होती है, जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जब बच्चों की जरूरत है तो उनको कितना ख्याल रखना चाहिए?
10: बच्चे जैसे माँ बाप पैदा होते हैं बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाते हैं, खिलाते हैं, बड़े करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, ये उन बच्चों को सोचना चाहिए कि हम अपने माँ बाप वृद्ध की सेवा करें। कुछ तो आदमी हैं जो ये सोचते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि वो नहीं सोचते और निकाल देते हैं। और गवर्नमेंट ने अच्छा किया है जो वृद्ध आश्रम बना दिए हैं जिसे हम लोगों को सहूलत मिल रही है। ये बच्चों को सोचना है कि हम माँ बाप को ना वहाँ जाने दें। जो अच्छे बच्चे हैं वो तो नहीं आने देते लेकिन बीच में कुछ नशेबाज हैं वो बोल देते चलो जाओ निकलो यहाँ से, किया तो तुमने अपने लिए था, हमारा क्या गलती है, जाओ निकलो। बहुत सी औरतें ऐसी हैं जो यहाँ आती हैं अभी भी हमारे पास हैं जिनको यही पता नहीं है कि मैं कहाँ की हूँ। और हमारी कई लोग ऐसे जिनकी पेंशन नहीं लगी और काम कर रहे हैं।
9: गजन सिंह जी, भारत सरकार की ओर से कई सारी योजनाएं हैं जिसमें एक योजना ये भी है कि ऐसे घरों का निर्माण किया जाए जहां पर इस तरीके के हमारे वृद्ध जन जो घरों में परेशान है या घरों में रह नहीं सकते उनको एक ऐसी सुविधा दी जाए जहां पर वो अपनी मर्जी से उठें, अपनी मर्जी से बैठें, अपनी मर्जी से उनको जो खाना मिलता है ताकि वो सम्मान के साथ जीवन जी सकें। तो आने वाले दिनों में क्या आपको ऐसा लगता है कि जो ये वृद्ध आश्रम है या जो हमारी संस्कृति है क्या उसमें ऐसा बदलाव आएगा कि आने वाले दिनों में जो सीनियर सिटीजन जो वृद्ध जन है जो बच्चों के माँ बाप है क्या उनकी देखरेख वो अच्छे से कर पाएंगे?
10: हाँ, ऐसे तो मैंने आपको बताया जब हम आए थे तो सहूलत इतनी नहीं थी जी। अब आगे से आगे बहुत सहूलत होती जा रही है और ये भी उम्मीद है जैसे आप कह रहे हो कि हमारे इंचार्ज जी बताते थे कि यहाँ नया मकान बनेगा जी। एक रूम में एक आदमी रहेगा जी। और ये मंजूर तो हो गया, अभी शुरू नहीं हुआ, हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन अभी भी हम एक एक कमरे में 4-4 हैं, हम बड़े आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को जी। खाने की घंटी बजती है, खाना खाओ, चाय का टाइम है, चाय पियो। बाकी बैठने के उठने के लिए हमारे पास बहुत बड़ी जगह है, तकरीबन यहाँ 10 किले जमीन है जो खाली पड़ी है, और हम लोग बड़े आराम से रह रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
9: अंत में आपसे गजन सिंह जी मैं ये चाहूंगा कि इस रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे?
10: ऐसे भी कुछ लोग हैं जो माँ बाप को नहीं भेजते, इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ लोग नशे में पड़ जाते हैं या दुश्मन उसको सीख दे देता है, ये काम तो कुछ करता नहीं है, बैठा रहता, बोझ है तुम्हारे ऊपर, भगा दो इसको, गवर्नमेंट ने इसी लिए बनाया। उसके दिमाग में ये तो आपने भी कहने मेरे माँ है बाप है, वो ये सोच रहा हाँ गवर्नमेंट ने बनाया तो इन्हीं के लिए, चलो वही भाग जाओ। और गवर्नमेंट तो जो कुछ कर रही है आगे भी इससे भी ज्यादा करेगी, हमें उम्मीद है।
9: और उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं और अपने घरों में रखते हैं ताकि उनकी जिंदगी भी समर जाए?
10: जो बच्चे अपने माँ बाप को घर में रखते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी भी इज्जत होती है, देखने वालों की भी इज्जत होती है। और जो माँ बाप के पास कोई भी चीज है, जैसे सोने का जेवर समझ लो या 2-4 पैसे हैं, वो उनको देंगे, और अगर वो उनको निकाल देते हैं जाओ यहाँ से निकल जाओ, तो वो चीज फिर लोगों के काम आती है या फिर वृद्धाश्रम के काम आएगी। यहाँ हमने देखा जो लोग भी मरे हैं उनका सामान आपस में ले लेते हैं लोग, तो उसके काम की तरह, मरने के बाद तो कोई सोचता नहीं, चाहे कोई गरीब है चाहे अमीर है, मर गया तो मर गया, उसका सामान का तो उसे निपटा ही नहीं है, ना उसे पता होता। हम तो ये कहेंगे सुनने वाले बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत से घर में रहे, इज्जत से रखो, अगर जैसे भी है गरीब है तो गरीबी के हिसाब से खाना खाओ, अमीर है अमीरी से खाना खाओ, ऐश करो।
9: जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो बुढ़ापे में हमें खाना पीना ज्यादा जरूरी है कि या जो घर में हमें इज्जत मिलती है हमें वो जरूरी है?
10: बुढ़ापे में खाया तो जाता ही नहीं है, इसे तो एक इज्जत ही में बहुत कुछ है। हमें अब 4-6 फुलके खाते, जब हम 1 फुलका खाते, जैसे बुढ़ापा होएगा उसकी खुराक तो कम हो जाती है, उसे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी बात कोई मान ले, उसकी लड़की है लड़का है बीवी है पड़ोसी, मेरी बात मान लो, अगर बात मान लेते हैं तो उसके लिए सब कुछ है, नहीं मान ले तो खाने की कोई ऐसी बात नहीं, खाना तो बहुत कम खाते हैं।
9: गजन सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और आपने अपने दिल की बात की, और हम भी यही इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हम कार्यक्रम चलाते हैं हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, उसमें हम यही कहने की कोशिश करते हैं कि जितने भी वृद्ध जन है उनको इज्जत सम्मान से रहने का हक है, अधिकार है, उनको अच्छे खान पान का अधिकार है, ताकि वो भी अच्छे से इज्जत से ऐसे ही जिए जैसे हम। और अगर कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन कर देता है कि माँ बाप को जाना पड़ता है वृद्ध आश्रम में, उनके बच्चे भी वो चीज देखते हैं, तो जब कल उनका समय आएगा उनका समय भी मैं यही मानता हूँ कि वो अच्छा नहीं होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए,
10: धन्यवाद।
2: सोचिए एक ऐसे इंसान की जिंदगी की कल्पना कीजिए जो वर्षों से आर्थिक तंगी झेल रहा था, जिसके पास रोजमर्रा के खर्चों के लिए भी पैसे नहीं थे, जो दूसरों पर निर्भर था और आत्म सम्मान की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्हें सरकार की पेंशन योजनाओं के बारे में पता चला और इसका लाभ मिलना शुरू हुआ तो वो फिर से अपने पैरों पर खड़े हो गए। अब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वे अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अपने लिए छोटे मोटे खर्चे खुद उठा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात उनका आत्मसम्मान वापस लौट आया है।
1: और दोस्तों इस बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन के इस अभियान ने। ये सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है बल्कि एक संवेदनशील प्रयास है जिससे हमारे बुजुर्गों को संवाद सहारा और सम्मान मिला है। हमारे रेडियो नेटवर्क और इस मंत्रालय ने ये सुनिश्चित किया कि हर बुजुर्ग की आवाज सुनी जाए, उन्हें समझा जाए और उनकी मदद की जाए, और सबसे खूबसूरत बात ये है कि अब उन्हें लगने लगा है कि वे अकेले नहीं हैं।
2: अब वे अपने जीवन को न केवल सम्मान के साथ जी पा रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। पहले जो लोग खुद को बेबस और असहाय महसूस करते थे, अब वे अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और अपने आसपास के बुजुर्गों की भी मदद कर रहे हैं। यही तो असली बदलाव है, यही तो इस पहल की सबसे बड़ी सफलता है।
1: दोस्तों, आज का ये एपिसोड जितना खास था उतना ही दिल को छू लेने वाला भी। हम सभी के जीवन में बुजुर्गों का एक अनमोल स्थान है। वे हमारे परिवार की जड़ें हैं, अनुभवों की खदान है और हमारी संस्कृति व परंपराओं के सच्चे वाहक हैं। आज हमने उन सच्ची कहानियों को सुना जो ये साबित करती हैं कि अगर सही समय पर सही सहायता मिले तो बुजुर्गों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ये योजनाएं सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। ये हमारे बुजुर्गों को उनका खोया हुआ आत्मसम्मान, उनका हक और समाज में उनकी गरिमा वापस दिलाने का प्रयास है।
2: आज जिन कहानियों को हमने सुना उन्होंने ये भी सिखाया कि बुजुर्गों की खुशियों में ही हमारी असली खुशी छिपी होती है। जब वे आत्मनिर्भर महसूस करते हैं, जब वे मुस्कुराते हैं, जब उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उनके चेहरे की चमक ही हमें बताने के लिए काफी होती है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इसमें सरकार की ये पहल एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रही है।
1: सच में लक्ष्मी, ये सफर जितना खूबसूरत था उतना ही प्रेरणादायक भी। आज हमने जाना कि हमारी थोड़ी सी जागरूकता और सही जानकारी हमारे बुजुर्गों की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए हमारी आप सभी श्रोताओं से यही गुजारिश है कि अगर आपके आसपास कोई भी बुजुर्ग हैं जिन्हें इन योजनाओं के बारे में पता नहीं है तो उन्हें जरूर बताइए। हो सकता है आपकी दी गई छोटी सी जानकारी उनके लिए वरदान साबित हो।
2: और हाँ दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर के बुजुर्गों के बारे में सोचें, उनसे बात करें और अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत है तो उनका हाथ थामें। आखिरकार जब वे हमारे बचपन में हमारे लिए खड़े थे तो अब हमारी बारी है कि हम उनके बुढ़ापे में उनके साथ खड़े हो।
1: तो दोस्तों, आज का इस खास एपिसोड के साथ हम इस अभियान के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। लेकिन ये केवल एक रेडियो शो का समापन नहीं है, बल्कि ये एक नई सोच, एक नई दृष्टिकोण की शुरुआत है। बुजुर्ग सिर्फ समाज का एक हिस्सा नहीं है, वे हमारे अनुभव, हमारी धरोहर और हमारे भविष्य का आधार हैं। आइए मिलकर ये प्रण ले कि हम न केवल सरकार की इन योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, बल्कि अपने बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता, प्यार और सम्मान को भी बढ़ावा देंगे।
2: तो बस दोस्तों, पिछले 4 महीने के प्रेरणादायक सफर को यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमारी बातचीत यहीं खत्म नहीं होती। ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक हर बुजुर्ग को उनका हक नहीं मिल जाता।
1: आप सभी श्रोताओं का इस पूरे अभियान में हमारे साथ रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ये रेडियो शो भले ही समाप्त हो रहा हो, लेकिन आपकी जागरूकता और मदद की भावना इसे हमेशा जीवित रखेगी।
2: हमेशा याद रखिए, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान।
1: तो इसी सकारात्मक संदेश के साथ हम लेते हैं विदा। मिलते रहेंगे नए विषयों, नई कहानियों और नई प्रेरणाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सुपोरी। गत 4 महीनों में हमने इस कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में बहुत सी योजनाओं के बारे में जाना और मैंने इस 4 महीने के सफर में भरत दद्दू के किरदार को जिया। मुझे बहुत खुशी है कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बुजुर्गों के लिए बहुत सी जानकारी ले आए जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा हम तक पहुंचाई गई और हमें इस कार्यक्रम को बनाने के लिए सिलेक्ट किया। एक बात भारत सोपोरी होने के नाते कहना चाहूंगा सभी श्रोताओं को कि अपने बुजुर्ग, अपने वृद्ध जो आसपास है और जो हमारे घर में है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में वृद्ध आश्रमों की संख्या कम हो ना कि बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि पिछले 4 महीने से आपने हमारे इस प्रोग्राम को सराहा, भरत दद्दू के किरदार को प्यार दिया और साथ में मेरे साथ जो लक्ष्मी के किरदार में मेरी पोती थी, आइए सुनते हैं वो क्या कहती है।
1: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी। पिछले 4 महीने से लक्ष्मी का किरदार निभाया जो भरत दद्दू की पोती है। इस सीरीज में हमने सीखा कि हमें अपने बुजुर्गों को सुनना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनके दिल की बातें सुने, उनके साथ हंसी मजाक करें ताकि वो महसूस करें कि आप उनकी कदर करते हैं। बुजुर्ग अक्सर तनहा महसूस करते हैं, इसलिए उनके पास बैठकर उनसे गुफ्तगू करें। हर बुजुर्ग शख्स अपने तजुर्बे की बिना पर फैसले करता है, इसलिए उनके फैसलों और राय के एहतराम करें। अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ हो तो नरमी से अपनी बात समझाएं, लेकिन उन्हें नीचा ना दिखाएं। उनके लिए दुआ करें और उनकी सेहत और सलामत की ख्वाहिश रखें। उनका हाथ चूमना या दुआ लेना एक बेहतरीन तरीका है इज्जत दिखाने का। बुजुर्ग हमारी सोसाइटी का वो हिस्सा है जो हमसे सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और थोड़ी सी तवज्जो चाहते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो ना सिर्फ उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है बल्कि हमारे लिए भी दुआओं का असर हमेशा साथ रहेगा। किसी और कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, एपिसोड 24, सफलता की कहानियां यानी सक्सेस स्टोरीज। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम था। ये इस श्रृंखला का आखिरी एपिसोड था। इस सीरीज में भरत दद्दू के किरदार को आवाज दी भारत सोपोरी ने और पोती लक्ष्मी के किरदार को आवाज दी आरजे किरनी ने। आज के एपिसोड में आपने वॉइस बाइट सुनी डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर श्रीमती सुरजीत कौर जी का, नरेंद्र जी का, प्रवीण जी का और वृद्धाश्रम अपना घर अंबाला कैंट से गजन सिंह जी का। इन सभी का आभार। कार्यक्रम के शुरुआत में जो वॉइस ओवर था उस वॉइस ओवर को आवाज दी निया जैन ने। इस कार्यक्रम को तैयार करने में सहयोग दिया आरजे किरनी ने। कार्यक्रम को एडिट, रिकॉर्ड व निर्देशित किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत में लेटे कहता हूँ, सर्दी आज कम है। दिसंबर की ठंड पी के कहता हूँ, गर्मी का मौसम है। मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। आदमजात की औकात क्या जो मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तन्हाई का जाफा लाता है, मुझे राखी बांधने बस लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए मुझे अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी, मेरी बीवी सिंदूर लगा के भी लगती कवारी है। मैंने सहूलत का गला घोटा, जरूरत नकारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगन से नहीं डरता, मगर मैं डरता हूँ। हाँ मैं भी डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं हवा में फैली अफवाह से डर जाता हूँ, मैं सैलाब गुमराह से डर जाता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को अपने उजाड़ेंगे, खून की मोहर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं खुद से लड़ नहीं सकता। अपनों की तरफ बंदूक लेकर मैं बढ़ नहीं सकता। मैं बस बोल सकता हूँ, मैं बस बोल सकता हूँ। मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कान पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। हजारों साल की ये सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज तुम मन की, जरा गहराई से सोचो। तुम्हें क्या सच में लगता है कोई अपना पराया है, हुआ पैदा है जो इस देश में बाहर से आया है। सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों को जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें अगर इश्क है इससे, तुम्हें अगर इश्क है इससे, तो इसको दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। धन्यवाद।

0: Amore mio, dove sei tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विदस्ता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विदस्ता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विदस्ता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामनाएं संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।
1: वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।
2: आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 MHz पर, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आप

शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

0: घी दालच में एक है लता मंगेशकर, एक है रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं सिंगर नीलम नारायण। मेरा एक बहुत प्यारा वीडियो सॉन्ग मीठे मीठे इश्क की रिलीज हो चुका है, जो आप रेडियो वितस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पे सुनने जा रहे हैं। अपना स्नेह जरूर दें। धन्यवाद।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्त।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मले दियो 7056413010 पा फोन।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वित्तस्ता 90.0 मेगा हर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। आज का कार्यक्रम लेखक शैलेंद्र पर आधारित है। पेश करेंगे आरजे किरनी। रिकॉर्ड किया राहुल अलियान ने। निर्देशन भारत सोपोरी का।

आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 FM मेगाहर्ट्ज पर। पेश है कार्यक्रम सुनहरी पल। सभी श्रोताओं को मेरा यानी किडनी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका एक खास प्रोग्राम में, जहां अल्फाज होंगे, जज्बात होंगे और शैलेंद्र के लिखे हुए गीतों की बातें होंगी। गीतकार शैलेंद्र, जो शब्दों का जादूगर था, जिनके गीत हर दिल के धड़कन बन गए। चलिए शुरू करते हैं ये आज का खास कार्यक्रम उन्हीं के लिखी हुई दो लाइनों के साथ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। ये गीत सिर्फ अल्फाज नहीं, एक फिलॉसफी है, एक जज्बा है, जो हमें जिंदगी से प्यार करना सिखाता है। आज का प्रोग्राम इस जादूगर के नाम।

संगीत की दुनिया में जब कभी भी गीतकारों की चर्चा होती है तो शंकर लाल केसरी लाल यानी शैलेंद्र का नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता है। फुटपाथ पर सोने वाले बेघर बेसहारा इंसान से लेकर दौलतमंद सब उनके दीवाने थे। शैलेंद्र ने अपने जीवन में ऐसे बेहतरीन गाने लिखे कि उसमें कौन अच्छा और किसे नापसंद कहे समझ में नहीं आता। आज भी लोगों के जहन में उनके लिखे गीतों की सुरीली तान सुनाई देती है। गीतों के राजकुमार कहे जाने वाले शैलेंद्र का जन्म 30 अगस्त 1923 को रावलपिंडी में हुआ था, जबकि शैलेंद्र के पूर्वज बिहार के भोजपुर के रहने वाले थे। गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र का परिवार रावलपिंडी आ गया और वहीं उनका जन्म हुआ।

जन्म होते ही शैलेंद्र के पिता ने पूरे इलाके में मिठाई बंटवाई, लेकिन वक्त की चाल को कौन समझ सकता है, हालात कुछ ऐसे बने कि पूरा परिवार आर्थिक बदहाली का शिकार हो गया और फिर ये तय हुआ कि रावलपिंडी छोड़कर मथुरा चला जाए। मथुरा में शैलेंद्र के बड़े भाई रेलवे में नौकरी किया करते थे। शैलेंद्र का बचपन मथुरा में ही बीता और स्कूली शिक्षा भी मथुरा के सरकारी स्कूल से हुई। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई वही के कॉलेज से की। पढ़ाई में शैलेंद्र शुरू से ही तेज थे। पढ़ाई के दौरान शैलेंद्र को पूरे उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। उन्हें बचपन से ही कविता लिखने और डफली बजाने का शौक था। मथुरा में कुछ समय बिताने के बाद पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि शैलेंद्र को मुंबई की ओर रुख करना पड़ा। कुछ कमाकर अपने परिवार का गुजर बसर करने के लिए शैलेंद्र ने मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर हेल्पर की नौकरी की। संगीत और कविता का सबसे बड़ा आवारा और साधारण शब्दों के असाधारण गीतकार शैलेंद्र 1948 की उमस भरी शाम में एक कवि सम्मेलन में कविता पाठ कर रहे थे कि उसी सम्मेलन में सूट बूट पहना हुआ एक शख्स उनके पास जा पहुंचा और कहा, मेरा नाम राज कपूर है।

दरअसल राजकपूर उन दिनों फिल्म आग की शूटिंग कर रही थी। शैलेंद्र की कविता सुनकर राजकपूर इतने खुश हुए कि उन्हें आग्रह किया कि वो अपनी कविता को उनके फिल्म के लिए लिखे, मगर शैलेंद्र ने राजकपूर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और बोले, मैं अपनी कविता का कारोबार नहीं करता, मगर वक्त की नजाकत को कौन समझ सकता है। कुछ समय बाद हालात ऐसे पनपे कि शैलेंद्र की माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई और उनके पास एक फूटी कोड़ी तक भी नहीं थी। फिर शैलेंद्र राजकपूर के पास गए और 500 रुपए उधार मांगे। तब तक राजकपूर शैलेंद्र पर फिदा हो चुके थे। उन्होंने अपने फिल्म में शैलेंद्र से गीत लिखवाने का वादा किया था और इस तरह माँ के कर्ज ने उन्हें गीतकार बना दिया। मशहूर गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र जैसा कोई नहीं हुआ दूसरा, उनकी कर्जदार रहेगी दुनिया। वो एक मायने से दूसरे मायने निकालते थे गीत में।

शैलेंद्र को टाइटल सॉन्ग का निर्माता भी कहा जाता है। 1948 में फिल्म बरसात में बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत करने वाले शैलेंद्र ने जीवन में अनेक ऐसे गीत लिखे आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। शैलेंद्र के बारे में मशहूर गीतकार जावेद अख्तर साहब का कहना है, जीनियस थे शैलेंद्र। दरअसल उनका रिश्ता बनता है कबीर और मीरा से। बड़ी बात को सादगी से कह देने का जो गुण शैलेंद्र में था वो किसी में नहीं था। उन्होंने बरसात के अलावा गाइड, मेरा नाम जोकर समेत कई फिल्मों के लिए गीत लिखे, लेकिन 1962 में बनी फिल्म तीसरी कसम ने उन्हें जकजोर कर रख दिया। फिल्म तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बतौरी निर्देशक भी काम किया। लगभग 4 साल तक चली इस फिल्म की शूटिंग ने उन्हें कर्जदार बना दिया। दोस्तों के भरोसे शैलेंद्र निर्माता बने, लेकिन उन्हें नुकसान हुआ। उन्होंने दोस्तों के व्यवहार को देखते हुए बाद में फिल्म नहीं बनाने की कसम खाई। फिल्म तीसरी कसम बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। फिल्म के लिए कर्ज की वजह से वो शराब की लत में डूब गए।

गीतकार गुलजार साहब का कहना है, शैलेंद्र को हिंदी सिनेमा का आज तक का सबसे बड़ा गीतकार कहा जाता है। उनके गीतों को खुरच कर देखें तो आपको सतह के नीचे दबे नए अर्थ प्राप्त होंगे। उनके एक ही गीत में न जाने कितने गहरे अर्थ छुपे होते थे।

शैलेंद्र तो वो गीतकार है जिन्होंने एक नन्हे शिशु का भी अपने गीतों में ख्याल करा और बड़े जान की शिशु जैसे नींद का जब वे लिखते हैं, आ जा रे आ निंदिया तू, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, आंखों में सपने सजाओ रे निंदिया तो आई। शैलेंद्र एक समावेशी कवि है। उन्होंने तकरीबन हर उस भाव के गाने लिखे जो आम इंसान के जीवन में रोज मौजूद रहते हैं। प्यार, काम, अफसोस, दुख, रोमांच, आप जिस भाव को उठा लाए शैलेंद्र का लिखा कोई गीत आपके पास तक चलकर आ जाएगा। उनकी भाषा सरल है, व्यक्ति को शब्दों के जाल में नहीं फंसाते थे। शैलेंद्र को बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। शैलेंद्र एक ऐसे गीतकार थे जिनको 3 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ गीतकार पुरस्कार मिला। शैलेंद्र सिंह को इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022-23 से सम्मानित किया गया है। शैलेंद्र कुमार को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया।

शैलेंद्र को कलम का कलंदर कहा जाता है। इस तरह कलम का कलंदर कला के कारोबार में किनारे न लग सका। शैलेंद्र सड़क पर आ चुके थे। शब्दों का जादूगर शराब में डूब गया और शराब शैलेंद्र की जिंदगी को पीती चली गई। 13 दिसंबर की 1966 को अचानक शैलेंद्र की तबीयत खराब हो गई। अस्पताल जाने के क्रम में उन्होंने राज कपूर को मिलने के लिए बुलाया, जहां उन्होंने राज कपूर से उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के गीत जीना यहां मरना यहां करने का वादा किया, मगर ये वादा अधूरा रह गया। और अगले दिन 14 दिसंबर 1966 की मनहूस शाम ने शैलेंद्र को हम सब से छीन लिया। इसे महज एक संयोग ही कहा जाएगा कि उसी दिन राज कपूर का जन्मदिन भी था, हालांकि उनके अधूरे उस गीत को उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने शक्ल दी।

ये भी दिलचस्प संयोग है कि शैलेंद्र का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन राज कपूर का जन्मदिन मनाया जाता है। राज कपूर ने नॉर्थ कोर्ट नर्सिंग होम में अपने दोस्त के निधन के बाद कहा था, मेरे दोस्त ने जाने के लिए कौन सा दिन चुना, किसी का जन्म किसी का मरण, कवि था ना इस बात को खूब समझता था। शैलेंद्र तो चले गए लेकिन भारतीय फिल्मों को 800 गीत दिए जो हमेशा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम का मैं समापन करती हूँ और आपको छोड़े जा रही हूँ शैलेंद्र के लिखे हुए एक बेहतरीन गीत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल एपिसोड 8। कार्यक्रम को पेश किया आरजे किरनी ने। आज का कार्यक्रम आधारित था लिरिसिस्ट शैलेंद्र पर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने। एडिट व निर्देशन भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां। पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गए।

0: सफर
1: छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल अपना साया भी पराया होने लगा। जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है, जब अपने ही पराए हुए

बातें ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर। और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी बिकता है।

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपने दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता के प्रसारण, और हमारे आज के प्रसारण अब यहीं पर संपन्न होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक हर दिन रहते हैं। अलग अलग विषयों पर कार्यक्रम तैयार कर आप तक पहुंचाते हैं और आशा करते हैं कि आपको हमारी यह कोशिश पसंद आ रही होगी। साथ ही उन सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जो हमें अपना फीडबैक भेजते हैं और अपने फीडबैक से हमें अवगत कराते हैं और साथ में अपने सुझाव भी भेजते हैं। हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं आपकी फरमाइश। हम उन सभी श्रोताओं का शुक्रिया भी अदा करते हैं जो हमारे प्रसारण के साथ साथ हमारी ये कार्यक्रम की श्रृंखला आपकी फरमाइश भी सुनते हैं और अपनी फरमाइशें भी भेजते हैं अम्बाला से, हमारे आसपास के गांवों से और साथ में पूरे देश से भी हमारे पास फरमाइशें आती है। इसके बारे में हम उस फरमाइश कार्यक्रम के दौरान भी जानकारी आप सभी को देते हैं और नंबर भी देते हैं जिस पर आप अपनी फरमाइश हमें भेज सकते हैं। और यह कार्यक्रम हम हर शुक्रवार को दिन के 2 बजे चलाते हैं और इसका पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होता है, यानी कल शुक्रवार है और कल दिन के 2 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो आपकी फरमाइशों पर आधारित होगा और उसी का पुनः प्रसारण अगले बुधवार को दिन के 2 बजे होगा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुहाना सफर, पेश कर रहे थे रमेश मरहटा। इस समय स्टूडियो की घड़ी में समय है 9:02:05। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और साथी भारत सोपोरी 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। दिन भर के मीठे नगमों, गजलों और खूबसूरत वादों और बातों के साथ अब समय आ गया है कि हम आज के इस सुहाने सफर को यहीं विराम दें। लेकिन रेडियो वितस्ता से विदा लेने से पहले आइए हमेशा की तरह आपको आज यानी 27 अगस्त 2026 के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस दिन के धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को जरा विस्तार से। पहला तेल का कुआं 1859 अमेरिका में दुनिया का पहला कमर्शियल ऑयल वेल खोदा गया जिसने आधुनिक ऊर्जा उद्योग की नींव रखी। दूसरा, इतिहास का सबसे छोटा युद्ध 1896 ब्रिटेन और जंजीबार के बीच हुआ युद्ध महज 38 मिनट में खत्म होकर इतिहास बन गया था। और एक और बात, द ग्रेट खली जयंती, WWE यानी वर्ल्ड रेसलिंग के रिंग में उतरने वाले, तिरंगा लहराने वाले भारत के दिग्गज रेसलर द ग्रेट खली का जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो यह था विषय आज का, और साथ में आप सभी श्रोताओं को हम एडवांस में बधाई देना चाहते हैं क्योंकि कुछ दिन बाद 1 सितंबर 2026 को एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। उसके लिए आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं, अगर आप सभी श्रोताओं को बधाई देना चाहते हैं तो आप जरूर हमारे स्टूडियो के नंबर पर अपनी वॉइस नोट बना के भेज दें, आप अपना सुझाव भेज दें और हम 1 सितंबर को उन आवाजों को प्रसारित करेंगे उस उपलक्ष में जब हम मना रहे होंगे तीसरी वर्षगांठ, क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो 1 सितंबर 2023 से शुरू हुआ था और आधिकारिक रूप से शुरू हुआ था और 1 सितंबर 2026 को हम तीसरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं आपके प्यार और स्नेह के साथ। तो जरूर याद रखिएगा, अपना वॉइस नोट तैयार कीजिए और भेजिए हमारे स्टूडियो के नंबर पर, जो हम अभी इन पंक्तियों के बाद आपको नोट कराएंगे। आप पेन और पेपर अपने पास रखिएगा या मोबाइल ऑन रखिए जिस पर आप इस नंबर को नोट कर पाएंगे। कुछ पंक्तियां लाया हूं रोज की तरह आप सभी को समर्पित है। पंक्तियां आज की यूं है, वितस्ता की कल कल गूंजे मोहब्बत का तराना, वितस्ता की कल कल में गूंजे मोहब्बत का तराना, रेडियो वितस्ता संग सजता है खुशियों का आशियाना, रात की खामोशी में संग लाए हैं मीठे सुरों के साज, रात की खामोशी में संग लाए हैं मीठे सुरों के साज, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर लेकर एक नई आवाज। जी हां दोस्तों, कल फिर मिलेंगे इसी मोड पर लेकर एक नई आवाज। जाने से पहले कल के कार्यक्रमों का विवरण, कल 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को
आपके लिए हम ला रहे हैं। सभा की शुरुआत होगी 5:58 पर वंदे मातरम और लाएंगे आपके लिए एक सुविचार। और पहली आवाज में आप सभी श्रोताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं पंचांग के साथ। कल राखी का त्योहार मनाया जा रहा है, आप सभी श्रोताओं को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 6:00 आप सुनेंगे भक्ति संगीत और 7:05 पर रक्षाबंधन के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम होगा। भारत के पर्व के अंतर्गत रक्षाबंधन पेश करेंगे आरजे किडनी। ये कार्यक्रम जरूर सुनिएगा और ये कार्यक्रम आप सभी बहनों के लिए, माताओं के लिए है। 8:30 रंगमंच की ओर शुक्रवार को सुनते हैं। कल फिल्म गाइड पर बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट मानव मेहरा जी। 9:30 कार्यक्रम सरगम एपिसोड 11 होगा, पेश करेंगे आरजे किडनी। 10:30 होगा मां अनमोल कार्यक्रम एपिसोड 2, पेश करेंगे भारत सोपोरी। संगीत की सभा जारी रहेगी। कल 2:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश और जो आपकी फरमाइशों पर आधारित होता है। 6:00 भक्ति संगीत, 6:30 शाम में गजल और 7:00 एक बार फिर पुनः प्रसारण होगा कार्यक्रम रक्षाबंधन का। भारत के पर्व के अंतर्गत रक्षाबंधन पर आधारित कार्यक्रम जरूर सुनिएगा ये कार्यक्रम। और 8:30 हर दिन की तरह कार्यक्रम सुहाना सफर पेश करेंगे रमेश मराठा। कल की कड़ी है तुम्हारी पनाहों में। यह था विवरण कल के कार्यक्रमों का और उम्मीद करते हैं कि आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखेंगे और अपना फीडबैक भी हमें भेजेंगे। और हमारा नंबर आप नोट कर दीजिए जहां पर आप अपनी फरमाइश भी भेज सकते हैं और साथ में आप अपना फीडबैक भी भेज सकते हैं और साथ में अपने वॉइस नोट भी भेज सकते हैं अगर आप सभी श्रोताओं को बधाई का संदेश देना चाहते हैं जो हम 1 सितंबर 2026 को प्रसारित करेंगे दिन के प्रसारण के दौरान। हमारा नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। और ये सभी नंबर, ये जो नंबर आपने आपको हमने बताया और इस नंबर पर आप अपनी जानकारी भेज दीजिएगा। ये जानकारी जो मैं आपके लिए लाया हूं इसको कंपाइल किया है हमारी कैजुअल अनाउंसर अन्नू ने। अब अपने दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता हर दिन सुबह 6:00 से लेके रात के 9:00 तक। कल सुबह तक के लिए शुभ रात्रि। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।